तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, फिल्म शिकार में से निकाल लेने की थी। अख्तन सस्तक का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने आपको सुनाए। चलिए, जानी दुश्मन वो भूत अख्तक फिल्म आपने अवश्य देखे होंगे, संजीव कुमार का। जानी दुश्मन में से निकाल रहे हैं, जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर लता जी चलिए आपको सुना रही है इस तरह से फिल्म जानी दुश्मन। निगेटिव नई खनन से 79 का ये गीत।

जी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर आपको सुनाए हैं नीक दिन नीक नसीब का ये गीत फिल्म जानी दुश्मन में से निकाल कर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है

रमा रामा गजब होई गवारे। लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में जो देन हाग शहर से प्रसारित हो रहा है। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और क्या ख्याल है, फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म होली आई रे में से निकाले नेगेटिव सेफ इंतख का ये गीत है मैथ मुकेश, इस तरह से

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। हमने प्लेयर में तीन गाने रखे हैं, जी हाँ तीन गाने, चार गाने रखे हैं। अब सोचता ये हूँ कहाँ शुरू करूँ, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत आप सुनिए, फिल्म दो बदन में से है।

नैनों में बदरा छाए, ये गीत हमने निकाले हैं मदन मोहन के साज पर मेरा साया में से, और हमने पेश की ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। एक गीत हमने और प्लेयर में रखे हैं, ये सुबह के लाली के जिक्र कर रहा है। अब ये मुझे पता नहीं है कि सुबह ये गीत चलाना चाहिए या शाम को या दोपहर को या रात को, ये पता नहीं है, क्योंकि ये गीत मेरे दिमाग से निकल गया। इसका धुन कैसे है, बात कैसी है, आशा जी एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुना रहे हैं। फिल्म है अभी तो ये अभी तो झीलें में से निकाल रहे हैं, निकति सीफ न सीफन तक। चलो सुनते हैं, चलो एक बार मैं भी बेवक्त के शहनाई बजा दूँ।

तू लाली है सवेरे वाली, फिल्म है अभी तो जी ले, नेगती सैफन सैफन तक आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए। दरअसल में ये गीत हमने पहली बार चलाया, पता नहीं धुप्पल में कैसे मिल गया। इसका म्यूजिक डायरेक्टर है जगमोहन बख्शी और सपन सेन गुप्ता। मुझे इस फिल्म के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब जब हमने सुन लिए, देख लिए और जान लिए, तब ढूंढेंगे ये फिल्म कि कैसा फिल्म है ये। अभी तो जी लेने नेगती सैफन सैफन तक ये गीत हम आपको सुनाए ओ फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

0: इसी में प्यार की आबरू मदन मोहन के साज पर लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाए। मैं भी एक बेगीत बैठ के बहुत दिनों बाद सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। इतने खो गए थे इस गीत में कि हमने भूल गए ये गीत भी चून करने को कि ये गीत कैसा है। चलिए हम आपको सुनाते हैं, मुझे भी नहीं पता कैसा गीत है।
1: जाना कभी चाहिए।

सबसे बड़ा रुपया, रुपया तो होना ही चाहिए जीवन में उसे अपना आगे बढ़ाने के लिए, काम में लगाने के लिए, प्रयोग करने के लिए रुपया अवश्य जरूरी है। ये सुंदर सा गीत स्पेशल मांग किया गया है।

मेरा बालम इतना दूर कि उनसे नैना लड़ गए। उसके बाद आपके लिए है ये सुंदर सा गीत एक बार फिर यहाँ से फिल्म जादू से आपके लिए पेश करेंगे। फिल्म जादू ने कतिन एन फेफ तक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म लता जी के आवाज में।

वो प्यार की हो गई जीत फिल्म जादू से, यहाँ से हमने श्रवण की है और कह रहा है मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, हम मंजिल पे ना पहुंचे तो उसे रास्ता नहीं कहते, और दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते मेरे दोस्त। जिंदगी भर साथ निभाना उसे ही सफर हम सफर कहते हैं। कल कोई मुझे याद करे, क्यों क्यों कोई मुझे याद करे, कल कोई मुझे याद करे, क्यों कोई मुझे याद करे, मुसाफिर जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का

यहाँ से हम चले दुनिया के मजा ले ले, दुनिया के मजा ले ले मेरे दोस्त, दुनिया के मजा ले ले। फिल्म का नाम बहार, इस बार है शमशाद बेगम जी की आवाज में।

सुरैया जी के आवाज में यहाँ से हमने सुने हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाते क्यों हो, दो पल की जिंदगी के दो पल की जिंदगी देकर दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है। और जो किस्मत में नहीं होते तो किस्मत उसे मिलाते क्यों है।

शमशाद बेगम जी की आवाज में स्पेशल स्पेशल स्पेशल प्रोग्राम बन गया है आपके लिए। यहाँ से जिंदगी का सच बस इतना है मेरे दोस्त, जो अपना हो वही सबसे सबसे ज्यादा रुलाता है। और जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना जिंदगी में ये बात कि कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। समझ में आए ना मेरा दोस्त? और कहते हैं कि जिंदगी और किस्मत दोनों खफा है, कि जिंदगी और किस्मत दोनों खफा है। जब बुरा वक्त चलता है तभी तभी हम तन्हा हैं। बाकी हिम्मत ना हारो, तन्हा में आप तन्हा जब होते हैं तो आपको सोचने का वक्त भी मिलता है और वहीं से आप बढ़ते हैं, ग्रोथ होते हैं।

शमशाद बेगम मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम सावन 1959 के पिक्चराइज हुआ फिल्म है। हाँ मेरे दोस्त, ऑल दिस गोल्ड। इसमें आप सुनते होंगे कि यह साज और संगीत, गीत का धुन जो है, जो इंस्ट्रूमेंट इसमें बजाया गया है, कितना अलहदा है, कितना सुनहरा है, कितना अच्छा लगता है वे सुनने के लिए। तो यहाँ से इस बारे आपके लिए फिल्म आर पार से निकलती फिल्म फाइव तक के शमशाद बेगम जी की आवाज में

Title song film aar paar 1954 ke picturize kiya film Shamshad Begum ji ke awaaz mein sune. Star cast isme hai Shama, Gurudat, Shashikala aur Kumkum ji. और कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ से हम बता दें आपको कि जिंदगी जिंदगी ना किसी से नाराज होकर जियो, जिंदगी में ना किसी से नाराज होकर जियो, ना किसी को नाराज करके जियो, जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी वाकई में पलक झपकते में यूं चला जाता है, पता ही नहीं चलता कि जिंदगी बहुत छोटी है, सबको खुश रखो और खुद भी खुश रहा कर, खुश होकर जियो।

0: 1946 ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है मेरे दोस्त। म्यूजिक डायरेक्टर इसका है नौशाद जी, डायरेक्टर है महमूद खान और गाने वाला है सुरेंद्र और नूर जहान।
1: दुनिया मेरी जवान है, आवाज़ दे कहाँ है।
0: यहाँ से जो आप सुन रहे हैं उस जमाने के लोग, तो उनका याद जो है वो ताज़ा हो गए होंगे, तो ये भी आपको बधाइयाँ हैं कि पुरानी यादें जो अच्छे अच्छे यादें उसे

एक बार फिर आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है आज के प्रोग्राम में, इस पल के प्रोग्राम में। खामोशी से मतलब नहीं, खामोशी से मतलब नहीं, बातों से है मेरे दोस्त। दिन तो गुजर ही जाएगा, मसला रातों का है। पल ये समय आपको बहुत सारे बधाइयां दे रहे हैं।

साथ है, कल हो ना हो आज तो है, ये पल तो है, इसे में इसी के एक अच्छा यादगार बना लो। मौका इसी पल में है। हो ना हो टाइटल सॉन्ग से हमने सुने सोनू निगम जी के आवाज में, रोज सुन सकते हैं इतना मधुर आवाज में, और इसमें कितना मत

स्पेशल स्पेशल सॉन्ग्स आपके लिए चुनकर और लाई हूँ आज के वक्त में। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से हम सब जुड़े हैं। स्पेशल स्पेशल आप ही के

जिंदगी है मेरे दोस्त, इसे जीने के लिए सिर्फ दो ही उसूल बना लो। हाँ, सिर्फ दो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। जिंदगी के हम सफर में हो तो बात पे यकीन तो नहीं था, पर तुम आए तो यकीन हुआ। और सफर जो है मोहब्बत ही से भर गया है।

कलम दिल चाहता से सुने हम शेखर महादेवन शान और के की आवाज में कि दिल जो भी कहे परवा नहीं, हम तो अपना रहा सीधे चल रहे हैं। इन लीफन हु द्रक यह ओक है मैं लीफ मेंस भाई बहनों इन लेफन हु द्रक यह ओक है नेम द तैत नेम द तैत और मैच दीर बारन त प्रातन व दू य आंदर्स में दि तैत अस दर नीत मेर सें। अच्छा समय अच्छा गीत आपके लिए हमारे अच्छे अच्छे लोग जो सुन रहे हैं फावन हिंदुस्तानी रेडियो। दुनिया के जिस गली में आप जहां भी जैसे भी हो आपका इंटरनेट है तो आप वर्ल्ड वाइड सुन सकते हो फावन हिंदुस्तानी रेडियो।

के घुंघरू टूट गए। इसी वक्त हुई से मैं यहाँ सोचकर और सोचते रहते कि घुंघरू कैसे ही टूट गए पता नहीं। मेरे दोस्त कहते हैं कि जैसे सोचोगे वैसा ही बनोगे। विचार ही आपकी पहचान है मेरे दोस्त, विचार ही आपके पहचान है।

फिल्म वॉर से निकाल दिया है जय जय शिव शंकर। सीटी भी बजा दी है। लेर तफर्तरावन द हेल वेरल ट्वेफल्ट।

शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

दोस्तों, आज भी हमें कुछ अच्छा करने का एक मौका मिलता है। जैसे एक अच्छी बात, थोड़ी मदद, थोड़ा सब्र, ये वो काम है मित्रों जो दुनिया को और खूबसूरत बनाते हैं। तो आज बाहर निकलें और किसी की मुस्कान की वजह बने मित्रों, किसी की मुस्कान की वजह बने। बेस्ट मैंसन ओक फंदा क्रैक वो वेरन कांस ओम इट्स खुद्स तो दून जो अस एन फ्रेंडलिक वर्ड एन बीच हेल्प एन बीच गेदुल्द दिट ज़ैन द दादन दी द वेरल्ड मूयर माकन। बेस्ट मैंसन लातन वो एरोप उइटगान एन फंदाग de reden zijn voor iemands glimlach. Oh, de reden zijn voor iemands glimlach. Beste mensen, zal dat niet mooi zijn?

साथियों, अगर भगवान हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं तो वो हमारा विश्वास मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। मित्रों, अगर वो देर करते हैं तो वो हमारा सब्र, वो हमारा खदल बढ़ाते हैं, और अगर वो जवाब नहीं देते तो वो जानते हैं कि हम उसे संभाल सकते हैं, संभाल सकते हैं। मित्रों, als God ons gebed verhoort, beste mensen, versterkt hij ons geloof. Als hij het uitstelt, versterkt hij ons geduld. En als hij niet antwoordt, weet hij dat wij het aankunnen.

भाई बहनों, नदी जब किनारा छोड़ देती है, ध्यान करना, नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है, मित्रों तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुभ जाए दिल में, बात छोटी सी अगर चुभ जाए दिल में मित्रों, तो जिंदगी की रास्तों को मोड़ देती हैं, जीवन ही अलग हो जाती है मित्रों। इसीलिए किसी के दिल को दुखाओ मत, ना ठीक बात है। बेस्ट मैंसन वनीर एन रिवीर बैतन जैन उफर स्त्रे कान है जेल्फ द रोत्सन इन द रिवीर फॉर ब्रेजलन सेल्फ एन क्लेन क्वेस्टी कान अल्स देस ओन बहांदर ब्लेफ्ट De loop van een leven veranderen. Daarom moet men niet kwaadwillig zijn. Blijf altijd lief. Blijf altijd aardig tegenover mensen. Dat is het beste wat je kan doen, lieve mensen.

हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों, दोस्तों, परमात्मा कहते हैं, भगवान बोलत है कि जब जिंदगी मुश्किल हो जाए प्रार्थना करो, जब जिंदगी शानदार हो प्रार्थना करो, और जब जिंदगी में घबराहट हो तो प्रार्थना करो। भगवान बोलते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा राह प्रदर्शक यानी गाइड एक हिस्स बनकर रहूंगा। ये भगवान बोलते हैं मित्रों, बेस्ट मैंसन खोट जेख्त अल्स हैट लेफन मुइलक वर्ड बेत अल्स हैट लेफन गवेल्दिग इस बेत अल्स हैट लेफन फरवारंद इस बेत एन एक जल आल तैत ये खेच जैन दत सेख देहेर बेस्ट मैंसन। वो मुई इस देत नीत है, मार वै मुतन वेल फर्ट्राव एनन हैबा।

साथियों, फूलों की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में फैलती है। ध्यान कीजिए, सिर्फ हवा की दिशाएं में फैलती हैं, लेकिन एक इंसान की अच्छाई, आपकी अच्छाई या बुराई सभी दिशाओं में फैलती है मित्रों, सभी दिशाओं में। तो आप जानिए कि क्या कर्म कर रहे हैं, कौन सी कर्म कर रहे हैं मित्रों। द ख्यूर फन ब्लूमन फर्स्प्रेट जिख स्लेक्स इन द रिक्टिंग फन द विंड बेस्ट मैंसन इन द रिक्टिंग फन द विंड मार द खुद है फन एंड मैंस फर्स्प्रेट जिख इन अल रिक्टिंग दिस वट डू यू नीट खुद Dat noemen wij de karma, die verspreidt zich in alle richtingen, beste mensen. Ik shant man, sabhi chunautiyon ke khilaaf hamara antim hathiyar hai. Isiliye hamesha shant aur tanav mukt rahe, beste mensen. An kalm geest is onze ultieme wapen tegen alle uitdagingen. Blijf dus altijd kalm en ontspannen. Vooral ontspannen. Dosto, un logon par shabdon ko barbaad na karein jo aapki chuppi ke layak hain. Kabhi kabhi सबसे शक्तिशाली बात कुछ भी ना कहना होता है। चुप रहो, लिफ मैंसन फर्स्पिल खेन वोर्दन अन मैंसन दी ऑफ स्टिल्त फर्दीनन सोम इस क्रखतस्त ओम हेलमाल नीच्स हेलमाल नीच्स सेखन बेस्ट मैंसन। देंक हियर इज ओवर नाउ।

हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों, जब आप अपना दिन शुरू करते हैं तो अपनी जेब में तीन शब्द रखें, तीन शब्द रखें, प्रयास, सत्य और भरोसा। प्रयास बेहतर भविष्य के लिए, सत्य आपके काम में, भरोसा ईश्वर में। मित्रों, सत्य आपके काम में और भरोसा ईश्वर में, फिर सफलता आपके चरणों में होगी। बेस्ट मैनसन अल्श यदाख बखिन हाउ दन द्री वोर्दन इन ये जाक प्रोबेर वार है एन फरत्रावन प्रोबेर फॉर बेटर टुकोमस्त वारहेत इन ये वैरक एन फरत्राव ऑप ये खोत दन लिख सुक्सेस अन ये फुतन बेस्ट मैंसन अन ये फुतन। साथियों, हंसना जरूरी है सिर्फ इसलिए नहीं कि ये हमें खुश करती है, बल्कि इसके असल स्वास्थ्य खजौंतहैत के लिए, मित्रों खजौंतहैत के लिए भी है, क्योंकि यह आपके शरीर और आत्मा को ठीक करती है। हंसना, जरूर हंसना, और उतरेतर वाला हंसना नहीं, दिल खोल के प्रेम से हंसो मित्रों। लखन इस बलंगरेक बेस्ट मैंसन नित अलेन ओमदात हैत ओंस खुलक माग मार ओग ओमदात हैत दात वैरकलक खजोंत हैत स्फोर देलन हेफ्त हैत खनीस्त लेखाम एन जिल हैत खनीस्त लेखाम एन जिल बेस्ट मैंसन ओंताओ वाते खजेक्त हैत।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सुनने वालों सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय जो आपके साथ जुड़ गए हैं कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह कि गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूँ और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ति माहौल के आवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलेगास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुनने वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेगास की ओर से।

सरस्वती मिश्रा के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सितु, बीबी साहिबा रहीम बख्श जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए, और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेगास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है, और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे है, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुनवलो, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी की कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जय किशोरी और सोनू निगम के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफ़र करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों है, जैसे कि देन हाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवाधाम मंदिर जो देन हाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और

सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे। सुनने वालों, जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

जय किशोरी जी के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। मेरे श्याम तेरा नाम ही काफ़ी है मेरी हर मुस्कान के लिए। यहाँ तक जो सुबह का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मैं आपका सेवक संजय आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रूह कुछ बदल दिया जाएगा। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं, एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय, क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है। विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुना है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुना है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं, तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

वीडियो में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर स्वागत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम 6 दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

वापस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

ग्रेट सॉन्ग हल्लालो, जिसमें काम किए रामचरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे, और दूसरा जो अटूट विश्वास।

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेगा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एम फी नाम है उनका, हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

0: महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा
1: निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। रूबरू मिलने की मौका नहीं मिल पा रहा है, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ और हम सब अभी विषय की ओर बढ़ेंगे। पर
2: हाँ जी, अगर दिल ना मिले तो प्यार अधूरा होता है। अगर दिल ना मिले तो प्यार अधूरा होता है, चांदनी के बिना। हाँ जी, चांदनी के बिना चांद कब पूरा होता है। आपके सेवा में सेविका शांता जी उपस्थित हो गई है। मेरी प्यार भरी राम राम प्रणाम आप तलक पहुँचे। और देखे सुने हमारे कोलेखा साथी क्या कहती है, क्या कह रहा है।
3: भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और ज्योति का प्रकाश से प्यार नहीं। शांता जी, अभी जैसा कि आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में एक शायर किया, तो हमने थोड़ा सा उसका रिप्लाई देना चाहा। संजय जी को पसंद आया होगा।
1: यहाँ तलक की ये कार्यक्रम को सुनने वाले भारत में, भारत से।
3: हाँ, हमें भी कार्यक्रम का प्रारंभ करना है।
1: और कार्यक्रम के प्रारंभ पे तो कौन सा गीत आप चलाने वाले हैं राजेंद्र जी, क्योंकि कुछ मसालादार कार्यक्रम आज बन रहा है, जबकि विषय एक बड़ा मुश्किल विषय है ऐसे कि ना?
3: हाँ, ऐसा विषय है।
1: तो राम जी करे बेड़ा पार के ओर हम सब बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम के सुनने वालों और कोई कोई में अभी मन उदास है। और पता है क्या हुआ राजेंद्र भाई, पिछले सप्ताह
3: बताइए क्या हुआ।
1: मैं तो घबरा गया था। मैं सुन रहा था रेडियो फाहोन और उसमें शांता जी ने बोला कि मेरा बकरी ने अंडा दे दिया।
3: बकरी ने अंडा दे
1: दिया। तो इस बात को सुन के अब सभी सुनने वालों बेचैनी से और इस बात के इसे सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है, कि बस ये कैसे हो सकता है। पर उस ओर बढ़ने से पहले तेरा राम जी करे बेड़ा पार।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर, और ज्योति का प्रकाश के लक्ष्य यही है कि हमारा जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा से और प्रकाश आ जाए तो और बढ़िया रहेंगे। क्योंकि ये कहावत है कि संसार के सबसे सुरक्षित बीमा, शांता जी, सबसे सुरक्षित बीमा किसको कहते हैं?
1: फरसेकरिंग।
0: संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा।
1: बिल्कुल,
0: बस याद रखे और अच्छे कर्मों की किश्त ले और समय से भरता रहे तो बस ये जीवन आनंद ही आनंद हम सबके चलते रहेंगे। दोस्तों, सुनने वालों, आज का विषय हमारे माध्यम है भाई राजेंद्र जी, जो एम्बेसी कौंसुलात से हम सबके सहयोग देते हैं। तो भाई राजेंद्र जी, जब मैं सुना ये विषय तो मैं थोड़ा चकित हो गया, थोड़ा सोचक में पड़ गया कि इसके बारे में तो हमें कुछ मालूम नहीं था और ये एक बड़ा मुश्किल विषय है। तो क्या आज ये विषय के बारे पर यहाँ प्रश्न हो जाता है कि शांता जी ने कहा है गत दिनों रेडियो पे बकरी ने दे दिया
2: अंडा,
0: खुलासा कीजिए, क्योंकि ये हमारे सुनने वालों भी बेचैनी से इंतजार कर रहा है कि ऐसा आपने क्यों कहा।
1: क्योंकि बकरी अंडा तो दे नहीं सकता, एक वो बच्ची जो कही ऐसे ना, वो अपने मुर्गी का नाम वो बकरी रखी थी। हाँ, इसलिए धौरा गए बाबूजी के लगा और कहे मेरी बकरी ने अंडा दे दिए। तो उसका बाबूजी पूछा ये कैसे हो सकता है, तो कहा बाबूजी मैंने मुर्गी का नाम बकरी रखी है।
0: खुलासा हो गया दोस्तों। तो हम सब प्रवेश कर सकते हैं अपने कार्यक्रम में ज्योति का प्रकाश, और विषय जो हम सबको बताने वाले हैं हमारे भाई राजेंद्र जी, जो आज एक इतना मुश्किल विषय लेकर, और हमारे विशेषज्ञ जो हम सब के लिए विषय खोज करके रखते हैं। तो हम उस ओर बढ़ेंगे। राजेंद्र भाई, आप बताइए कि आज का विषय क्या है।
2: हाँ, हिंदुस्तानी रेडियो को सुनने वालों को मेरा हार्दिक बड़ा नमस्कार। और आज का जो विषय है वो है अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि जी के बारे में आपने हो सकता पहले सुना हो। अगस्त्य ऋषि ने एक ही तीन आचमन में पूरा समुद्र सोख डाला था। तो आज जो विषय है वो बहुत ही उत्सुकता वाला विषय है और इसमें बहुत गूढ़ जानकारियां हैं जिससे सब लोगों को इससे अवगत कराएंगे और उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं।
0: उस ओर बढ़ने से पहले राजेंद्र जी, क्या पता है कि आज शांता जी अपने पिटारा में, इच्छाधारी पिटारा में भर के क्या लाए, कौन सा गीत लेकर आए हैं?
2: हाँ, शांता जी जो पिटारा में लाए वो बहुत ही अच्छा गीत है और उसको हम अभी शुरू करेंगे।
1: जी, जिस पिटारा का मतलब, आपका मतलब कुड़कुड़ू।
0: अब दोस्तों, यहाँ अब कार्यक्रम में जब हम लोगों कुछ सोचे थे कि पिटारा और नाम रख दिया जाए, पर शांता ने उन्हें कुड़कुरु कर दिया।
1: कुड़कुरु ये सुरिनाम में प्रसिद्ध है ना,
0: कुड़कुरु ना,
1: कुड़कुरु वो दुई देल में रहता रहे हैं। एगो ग्लासगत एंदा हप यदि डेक्सल दरो तो ओके बंद कर दे, तो ओमे धर खास तौर पे लोग उससे मछली पकड़ते थे।
0: ओके, तो वो कुड़कुरु थे।
1: हाँ, कुड़कुरु।
0: कुड़कुरु पर तो इस पे प्रश्न आ जाता है राजेंद्र जी, क्योंकि हमें जो हमारे विशेषज्ञ है जो हमारे लिए और ये बना करके हमारे साथ और हमारे लिए देते हैं कि जो हम सब बात कर पाए उसके बारे में, हम क्यों ना पहले एक सुंदर सा और शांता जी का जो क्या कहते था पिटारा से कुरकुरु बना दिए। तो ये पिटारा किस चीज के लिए होता है राजेंद्र जी?
2: पिटारा जो पहले सांप को एक बंद करके रखते थे छोटे, उसमें
1: जी,
2: तो उसको पिटारा कहते थे, मतलब सांप के रखने वाला, सांप को रखने वाला एक टोकरी, उसको पिटारा कहते थे। कि हम जैसे वो खोलता था तो एकदम सांप बाहर निकलता था, सब लोग डर जाते थे कि सांप आ गया, तो पिटारा उसको कहते हैं। तो पिटारा का मतलब है कोई एक बंद चीज जो खुले खुले तो सब लोग देखते ही रह जाए।
0: भाई राजेंद्र जी, यानी कि शांता जी का पिटारा हो गया आप कुरकुरु सरनामी भाषा में, और ऐसे ही कुछ चीज थे। अब यहाँ ये प्रश्न आ जाता है भाई, प्रश्न ये हो जाता है कि क्या आप जानते हैं कि नाग और सर्प, क्योंकि पिटारा में नाग बैठ के और नाग को नचाते थे ना
2: जी,
0: क्या कहते हैं, और यानी कि कलाकार लोग जो अपने बांसुरी बजा बजा करके और नाग को और नचाते थे,
2: कृष्ण जी कृष्ण बांसुरी बजाते थे,
0: कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, पर कलाकार लोग जो है कि नाक को और तनी पिटारा में से निकाल देते थे कि उसे नचवाते थे ना।
2: हाँ,
1: बीन बजाकर मेरे ख्याल से।
2: हाँ, बीन बजाते हैं और फिर सांप नाचता।
1: एक फिल्म ऐसे है ना, फिल्म मंडोले में,
0: मंडोले में ना
1: जी,
0: गुफ्तगु तथा उसके बारे में पहले हम सबको ये संदेश दे दे कि नाग और सर्प में फर्क क्या है।
2: हाँ, जो नाग और सर्प में फर्क है, नाग और सर्प में क्या अंतर होता है इसके बारे में चर्चा चलेगी। नाग और सर्प दोनों भगवान कश्यप की संतान है, अर्थात आदित्य, सूर्य, देवराज, इंद्र, गरुड़, उपेंद्र, भगवान वामन श्री हरि के ही भाई हैं। नागों की माता सुरसा देवी,
0: नागों के माता सुरसा देवी, यानी कि नाग के माता भी, उनका नाम भी
2: सुरसा देवी है। नागों की बहन माता मनसा देवी है और सर्पों की माता कद्रु देवी है। नाग और सर्प एक ही पिता की संतान होने के बावजूद अपने अपने कर्मों के कारण अलग अलग महत्व रखते हैं। नाग देवता माने जाते हैं और सर्प प्रेत योनि में माने जाते हैं। ये फर्क है कि नाग जो होता है वो देवता माना जाता है और जो सर्प होता है वो प्रेत योनि में माने जाते हैं।
0: ओ, तो ये बात तो हमें बिल्कुल पता नहीं था। तो यानी कि कहने के तात्पर्य ये है, नाग देवता और सर्प है तो वो प्रेत योनि में माना जाता है
2: जी।
0: और इसके बारे में और क्या हम सबके लिए आप बता सकते हैं राजेंद्र जी?
2: स्वप्न में नाग देखने का मतलब शुभ होता है, जबकि सर्प देखना पितृ या प्रेत देखना माना जाता है।
0: कोबरा देख लो तो जान लो शुभ है।
2: हाँ,
0: और कोई और सांप के बोमा देख लो
2: वो ठीक नहीं,
0: नाग का सपना देख लो तो यानी कि ठीक है।
2: ठीक है, नागों में सर्प प्रथम, सर्वोपरि एवं ज्येष्ठ भगवान अनंत शेष नाग माने जाते हैं। ये भगवान नारायण का ही स्वरूप है। इनके मस्तक पर संपूर्ण पृथ्वी स्थिर रहती है। इन्होंने अपने आप को भगवान नारायण की सेवा में समर्पित कर दिया।
0: राजेंद्र जी ठहरो ठहरो, क्योंकि इस पे तो मुझे एक वृतांत याद आ गया।
2: जरूर, आप अपना एक वृतांत सुनाइए।
0: क्यों ना हम सब एक गीत की ओर बढ़ते, तो उसके बाद में हम वृतांत की ओर बढ़ेंगे।
2: पहले गीत की ओर बढ़ते हैं, इसके बाद वृतांत की ओर बढ़ते हैं।

0: जो सुंदर गीत जो चलाए भाई राजेंद्र जी, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो अभी हम सबको ऋषि अगस्त्य के बारे में सुनाने वाले हैं, और हम तो सिर्फ अभी खाली सिर्फ एक ही कहे थे कि भारत के सुनने वालों, दोस्तों सभी सुनने वालों, जो ये कार्यक्रम फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा जो दुनिया के 188 देशों में ये कार्यक्रम को सुना जा सकता है इंटरनेट द्वारा, और ख़ास करके हॉलैंड में जो हमारे साथ ये कार्यक्रम सुनने वाले हैं पंडित जी, जो डायरेक्ट व्हाट्सएप किया कि आप लोगों ने नहीं कहे नीदरलैंड में सुनने वालों, तो दोस्तों ये है तो कार्यक्रम फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो, और हम सभी नीदरलैंड के सुनने वालों के और जितने सुनने वालों सभी को हार्दिक से अभिनंदन एक बार फिर से कहते हूँ। और ये मत भूलना कि अभी हमारे विषय जो है हम उसमें छलांग नहीं लगा पाए, क्योंकि अभी तो नाग देवता के बारे में कुछ हमारे राजेंद्र जी हम सबको सुना रहे हैं, और कुछ अभी संदेश बाकी है राजेंद्र जी कि हम सब छलांग लगा देते हैं?
1: नहीं, अभी थोड़ा सा संदेश बाकी है, तो आगे हम शुरू करते हैं। नागों में सर्वप्रथम सर्वोपरि एवं ज्येष्ठ भगवान अनंत शेष नाग माने जाते हैं। ये भगवान नारायण का ही स्वरूप है। इनके मस्तक पर संपूर्ण पृथ्वी स्थिर रहती है। इन्होंने अपने आप को भगवान नारायण की सेवा में समर्पित कर दिया, इसलिए नागों के राजा इनके कनिष्ठ भाई नागराज वासुकी माना जाता है।
0: पर हम तो कुछ वृतांत सुनाने वाला था, और अगर आप हमें अवसर नहीं देंगे तो मैं सुना भी नहीं पाएंगे। जैसे कि आपने कहे थे कि राजेंद्र जी की शेष नाग के सिर पे ये पृथ्वी डोल रहा।
1: हाँ, शेष नाग के सिर पे ये पृथ्वी पूरा टिका हुआ है।
0: तो ऐसा हुआ कि दो मित्र एक दूसरे को मिलने की इच्छा किया, वशिष्ठ मुनि जी और स्वामी विश्वामित्र जी।
1: जी,
0: दोनों एक दूसरे का बड़ा प्रिय मित्र थे, और इच्छा किया एक दूसरे से मिलने के, और कहते हैं कि यह इच्छा शुद्ध होता है तो जरूर होता है, और कभी काल के उससे भी बड़ा बढ़िया हो जाता है।
1: जी,
0: इच्छा किया और दोनों एक दूसरे से मिले। दोनों एक दूसरे से मिले तो वशिष्ठ मुनि महाराज ने अपने प्रिय स्वामी विश्वामित्र जी को मिल करके और इतना प्रसन्न हुआ, और स्वामी विश्वामित्र जी जो 1000 साल के तपस्या किया था वो भी इतना प्रसन्न हुआ अपने मित्र को मिलके। तो दोनों एक दूसरे को मिलके गले लगाते हैं, और गले लगाते लगाते सोचते हैं कि क्या मैं करूं, क्या दे सकता हूं इन्हें। तभी स्वामी विश्वामित्र जी ने 1000 साल के तपस्या किया था, उन्होंने अपना 1000 साल का तपस्या अपने वशिष्ठ मुनि महाराज अपने प्रिय मित्र को अर्पित कर दिए। अब वशिष्ठ मुनि महाराज सोच में पड़ गया कि मैं क्या देऊ, मैं तो आम जनता हूं, अपने जीवन में कोई तपस्या नहीं किया है। तभी उनके ये ख्याल आया कि उन्होंने अपने जीवन में एक घड़ी का सत्संग किया था। एक घड़ी का सत्संग, एक घड़ी होता 24 मिनट का ना।
1: हाँ।
0: तो एक घड़ी का सत्संग उन्होंने किया था, और उन्होंने अपने, क्योंकि कुछ देना है तो कुछ लेना है, कुछ लेना है और देना, ये दोनों साथ में चलते हैं। तो उन्होंने एक घड़ी का सत्संग अपने मित्र स्वामी विश्वामित्र जी को अर्पित किए, यानी कि गिफ्ट, यानी कदों में दिए, भेंट में दिए। दोनों देखने लगे कि एक ओर 1000 साल के तपस्या और दूसरा ओर एक घड़ी का सत्संग। दोनों इसमें ये प्रश्न डाले कि इसमें से बड़ा कौन है। तभी दोनों सोचे कि ये सृष्टि के रचने वाले ब्रह्मा जी है, चलते हैं उसके पास और उनसे ये संदेश देते हैं कि ब्रह्मा जी बताइए, हमें इस बात को ज्ञान नहीं है कि एक घड़ी का सत्संग बड़ा है या 1000 साल का तपस्या बड़ा है। ब्रह्मा जी तो स्वभाव दोनों के जानते थे, सोच में पड़ गए और सोचे अभी इसको मैं छोटा बनाऊं और इसके मैं बड़ा बनाऊं तो कहीं हमें शाप ना दे दे। ब्रह्मा जी ऐसा और संदेश दिए कि देखो जाओ शेषनाग जी के पास, वही शेषनाग जिसके पृथ्वी धोल रहा सिर से।
1: जी, जी
0: तो दोनों जाकर के शेषनाग जी को प्रणाम करते हुए और उनसे ये प्रश्न करते हैं कि शेषनाग जी बताइए हमें, एक घड़ी का सत्संग बड़ा है या 1000 साल का तपस्या बड़ा है। अब शेषनाग भी चक्कर में पड़ गए, उन्होंने सोच में पड़ गए कि किसे और कौन कैसे हम बड़ा करूं। तो शेषनाग जी ने कहा कि मेरे सिर पे जो ये पृथ्वी डोल रहा है, हमें सोचने का अवसर दे वो, और ये जो पृथ्वी है जो डोल रहा है, इन्हें अपने सिर पे रख लो कुछ समय के लिए ताकि हम सोच सके। और पृथ्वी को स्वामी विश्वामित्र जी के जो 1000 साल के तपस्या किए थे उनके सिर पे रख दिया गया और पृथ्वी डोलते रहे, पर पृथ्वी का भार सह नहीं पाया और वो कहने लगे कि भाई वशिष्ठ मुनि जी, ये भार मुझसे सहा नहीं जा रहा है, मदद करो। क्षण समय में और वो भार संभाल नहीं पाए और वो पृथ्वी को वशिष्ठ मुनि महाराज के सिर पे रख दिए। जैसे कि वशिष्ठ मुनि महाराज के सिर पे रखा गया, जो पृथ्वी डोल रहा था डोलना बंद हो गया। तो समझ गए होंगे आप कि सत्संग में वो शक्ति है, सत्संग वो गंगा है जो पापी से पापी भी ना हो पावन हो जाता है। जो सृष्टि जो डोल रहे थे वो एक घड़ी के सत्संग से बंद हो सकता है। तो शेषनाग जी इसे हंसते हुए कहे कि आप खुद ही फैसला करो, खुद ही सोच लो कि कौन बड़ा है। पर नाग देवता के जो अगर कुछ और संदेश है तो सुना दो, तो हम सब आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में।
1: आपने जो जानकारी दिया है अभी बहुत ही अच्छी और दृढ़ है, मुझे लगता है कि सब लोगों को इसको बड़ा फायदा होगा और वो इसका लाभ उठाएंगे। आगे नागराज की बात चल रही थी, नागराज वासुकी भगवान शिव के आभूषण रूप में उनके साथ विराजमान रहते हैं। नवनाग इस प्रकार हैं, अनंत शेष, वासुकी, तक्षक, कालिया, कंबल, कर्णोटक, पद्मनाभ, शंखपाल और धृतराष्ट्र। कर्णोटक भगवान शिव के गण माने जाते हैं। इन नवनागों के नाम का नित्य स्मरण करने से मनुष्य काल सर्प दोष से मुक्ति पा जाता है। काल सर्प दोष के कारण मनुष्य जीवन में कभी दुख नहीं पाता एवं मांगलिक कार्य में भी बाधा आती है। अतः नाग और सर्प को आप लोग एक ही श्रेणी में न रखें। इस प्रकार नाग और सर्प का जो है अलग अलग प्रकार से, और 9 प्रकार के नाग हैं जिनका भी नाम लिया गया है। बताइए संजय जी, अब आप आगे का क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
0: संत जी कुछ और कहने वाले हैं, क्योंकि काल सर्प दोष के बारे में भी कुछ कहना है संता जी?
2: नहीं, मैं पूछ रही हूँ काल सर्प दोष इसके क्या कहते हैं, किसको कहते हैं और क्या है ये?
0: वो तो एक बड़ा बड़का वृतांत हो जाएगा अगर जो हम लोग, क्योंकि आज का विषय हमारे है, तो क्यों ना एक बार उसके बारे में एक अपार्थ और वृतांत ले जाएंगे शांता जी, क्योंकि आज हमारा कार्यक्रम जो कि अभी हम सब छलांग नहीं लगा पाए हैं, ऋषि अगस्त्य। तो ऋषि अगस्त्य के ओर बढ़ने से पहले राजेंद्र जी थोड़ा से कुछ सुना दो, तो हम सब एक गीत की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों सुनने वालों, इन जानकारी को हमें जानना है, और ये एक अच्छा संदेश है जो शायद हम सब कभी सुने भी नहीं थे। हम उसके बारे में कुछ ना कुछ संदेश लेकर आपके लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हम राजेंद्र जी क्या है उसका संदेश?
2: मैं ये कहना चाहती थी कि अभी हमारे कॉलेज जी कहा कि सत्संग ना, कि एक घड़ी के सत्संग से पृथ्वी जब सिर पे धरे तो रुक गए। तो जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो इस वक्त हम कर रहे हैं फावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, ये भी एक सत्संग है।
1: हाँ, जैसे कि अभी हमने नागों की बात करी तो उसके विषय में एक सुंदर सा नगमा पहले रखा जाए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो तब तक बताइए संजय जी, आपका जो विषय है उसके बारे में।
0: अब उस ओर बढ़ नहीं पाए और गीत का जो बोल है वो भी आप ढूंढ रहे हो, तो हम ये जरूर कहना चाहूँगा, अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ा है। अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है, यानी कि हम सबको हौसला रखना चाहिए और हमें
1: गीत की ओर बढ़ रहे हैं और इसके बाद हम अगला
0: फिर आगे बातचीत होगा। दोस्तों हम सब सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ रहे हैं।

0: देवता है और इस सुंदर सा नगमा जो भाई राजेंद्र जी हम सबके लिए चलाए। तो शांता जी, ये जानकारी आपको पता था नाग देवता वाला कि नहीं?
1: मैं सच कहूँ तो जो हम हर सप्ताह की तरह यहाँ पे ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में हम एक एक वाक्य जो लाती है ना, जो एक औंदर वैरव हम लाते हैं, ये बहुत ज़्यादा से हमारे खातिर नए हैं।
0: मैं देख रहा हूँ भाई शिव किशुन सिंह जी और फोन पे और कह रहे कि हम लोग भी कार्यक्रम सुन रहे, और देख रहा हूँ व्हाट्सएप बरख पे आए हैं कि तिल बरख से पंडित ब्रह्मदत्त शिव नंदन जो अपने पत्नी के साथ सुनीता जी ये कार्यक्रम को सुन रहे, तो पंडित जी को बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए और सभी सुनने वालों को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो कोई व्हाट्सएप बता देते हैं हम सबके लिए या कोई संदेश पठा देते हैं तो हम सबके हौसला और बढ़ता है और हम सब ये मन चाह कार्यक्रम जो ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम में हम सबको भी अच्छा लगता है कुछ सुंदर सुंदर संदेश आपके लिए रखने के लिए। जैसे कि शांता जी अभी कहे कि नाग देवता का जो एक छोटा सा ऑंदरवारप उसमें जोड़ दिया गया था, तो कुछ विशेष जानकारी हम सब लेकर आपके लिए यहाँ उपस्थित है। राजेंद्र जी, ये बताइए कि आज ऋषि अगस्त्य के बारे में क्या आप सुनाने वाले हैं?
2: आज जो विषय है ऋषि अगस्त्य जी का वो बहुत ही गंभीर विषय है, तो उसके बारे में आज चर्चा रहेगी। प्राचीन भारत के ऋषि अगस्त्य सप्त ऋषियों में एक थे, जिन्होंने भगवान मुरुगन से कलारी पायातन सीखकर दुनिया को इससे अवगत कराया। यानी कलारी पायतु एक टेक्निक थी ऋषि की, उन्होंने वो सीखकर पूरी दुनिया को इससे अवगत कराया, पूरी दुनिया को बताया इसके बारे में।
0: तो ये बात हो जाता है कि हमारे ऋषि द्वारा, क्योंकि एक कार्यक्रम हुआ था उसमें हमने इस बात को जानकारी पाए थे कि भारत हमें और जीरो दिए थे ना
2: जी,
0: तो उसके कारण आज लोग वैज्ञानिक लोग एकदम मार्स तलक पहुंच गए, यानी कि मंगल तलक। और ये यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये ऋषि अगस्त ने कुछ बातें हैं, क्या कह रहे थे आप?
2: कलारी पयातु,
0: हाँ, तो उसके आप थोड़ा निचोड़ दो सरनामी में, हमारे एकदम जैसे सरनामी आप बात करते हैं आजकल।
2: हाँ, तो जिन्होंने कलारी पयातु एक रहिला टेक्निक रहिला, उन्होंने भगवान मुरुगन से सीखिला, दुनिया को इससे अवगत कराया, और इनकी भक्ति भाव को देखते हुए जावा और सुमित्रा में इनकी पूजा भी होती है। सुमात्रा और जावा एक देश है और दो देश हैं, उनमें इनकी पूजा भी होती है
0: वहां पर अगस्त्य ऋषि का
2: जी। ये दक्षिणी चिकित्सा प्रणाली सिद्ध वैद्यम के जनक भी हैं। इन्होंने अगस्त्य संहिता भी लिखी थी। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं, जो हैरान करने वाला है और ये साबित करता है कि भारत में इसका ज्ञान मौजूद था।
0: तो ये बढ़िया बढ़िया संदेश आप सुना रहे कि भारत, यानी टेक्निक जो, ये तो ये वृतांत तो ये 100 साल पुराना नहीं होगा ना?
2: नहीं, ये वृतांत बहुत पुराना है, ऋषि मुनि बहुत पुराना है, सतयुग
0: का,
2: द्वापर कलयुग, ये युगों की बात है, बहुत पुराना विषय।
0: तो ये तो मैं थोड़ा अब
1: आप बेशब्द हो गए ना?
0: बेशब्द हो गई,
1: मैं भी बेशब्द हो गई,
0: क्योंकि इन बातों को सुन करके अब देखो आज से 20 साल पहले
2: ये सब वैदिक काल के जमाने की बात है। वैदिक काल मतलब बहुत पुरानी बात है, वैदिक काल जब लोग सब वेदों को मानते थे, उपनिषदों को मानते थे।
0: और इस बात को सुन करके कि हमारे ऋषि अगस्त ने इनके द्वारा क्या और हुआ,
2: उससे पहले हम चाहते हैं कि एक ये देश है वीर जवानों का एक सुंदर सा नगमा रखा जाए, और इसके बाद उसका और भी प्रचुर मात्रा में इसका आनंद आएगा, तो सुनते हैं।

0: इस देश के यारों क्या कहना। तो विषय आज ऐसा ही है कि इस देश में ऐसे ऐसे भारत देश में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए कि उनका क्या कहना है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया जिससे मुझे मदद मिली। संस्थाप्य मृणमये पात्रे ताम्र पात्रम सुसंस्कृतम छाद ये छादि ग्रीवेना चंद्राभि कंठा पंसुभि दस्ता लोष्टो निधात्वा परदाश्चा दिदित्तत्ता संयोगा जयाते तेजो मित्रा वर्ण संजिताम। अगस्त्य संहिता से लिया गया है। अर्थात एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टी का कॉपर सीट डालें और सिखी ग्रीवा कॉपर सप्लेट डालें, फिर बीच में गोली कास्ट पांसु वल से डस्ट लगाएं, ऊपर पारा यानी मरकरी तथा दस्त लोस्ट जैक डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मिस्त्रा वरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। तो आप देख रहे होंगे कि ऋषि अगस्त्य जी ने बहुत पहले ही इस बारे में ये सब चीज बता दी थी कि किस प्रकार से बिजली बन सकती है। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रो प्लॉटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है।
1: राजेंद्र जी, आप इतना ज्यादा तादाद में ये संदेश हम सबको सुना रहे हैं
0: जी,
1: पर इसे बात सुन सुन करके ऐसा लग रहा है कि ये हम मनुष्य काफी देर से ऋषि अगस्त्य को समझे।
0: हाँ, ऋषि अगस्त्य को कुछ लोग तो पहले ही समझ गए थे, लेकिन जिन लोगों तक जानकारी नहीं पहुंची वो अब पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से।
1: और ये बात हो जाता कि इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक जो हमारे ऋषि जी के
0: जी
1: ज्ञान से जो रख दिए थे, जो उस समय अभी आपने भी इस बात को भी वर्णन किए थे ना
0: जी,
1: कि उसके बारे में मैं थोड़ा और जानकारी जानना चाहता हूँ कि आपने कहे कि ऋषि अगस्त ने सारा समुद्र को सोख दिए थे।
0: हाँ, ऋषि अगस्त ने एक बार समुद्र में तीन आचमनी किया और पूरा समुद्र सूख गया,
1: सारा समुद्र।
0: और इसके बाद फिर जब सब लोगों ने प्रार्थना करी कि वहाँ पे बहुत सारे जलचर जीव हैं और इस प्रकार से होगा तो कैसे सब रहेंगे, तो फिर उन्होंने वो पानी नाक से निकाला, उसी दिन से समुद्र का पानी खारा हो गया।
1: ओ, तो पानी जो खारा हुआ है ये ऋषि अगस्त के कारण, क्योंकि वो अंदर ले लिया था सब
0: जी,
1: और सब जब छोड़े तो नाक के द्वारा छोड़ने से पानी खारा हो गया
0: जी। तो इस प्रकार से जो पानी खारा हुआ वो नाक के द्वारा छोड़ने से हुआ।
2: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om voorraden aan te vullen. De overheid hoopt het systeem vanavond te herstellen. Inwoners worden opgeroepen zuinig te zijn met water. Het eiland heeft geen natuurlijke zoetwaterbronnen en is daardoor kwetsbaar voor droogte. In 2009, 2013, 2015, 2016 en 2021 ontstonden eerder soortgelijke

0: gelijke problemen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de Boeing 737 MAX crash in 2019. Een rechtbankwoordvoerder maakte deze uitspraak woensdag bekend. Het gaat omgerekend ongeveer om €25 miljoen aan schadevergoeding. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. PFZW en BPF Bouw verwachten een plus van 0,6%. PMT gaat uit van 0,5%. Definitieve cijfers volgen op basis van de stand eind september. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. Alabama, Oklahoma en Tennessee voeren vandaag een dodelijke injectie uit bij 3 mannen veroordeeld voor moord. Anthony Darrell Hines kreeg zijn doodstraf al in 1986 opgelegd. Jerry Williams pas in 2024. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Fahon Hindustani Radio.
2: तो ये संदेश तो हमें अभी इस बात को सुन के बड़ा ये सोच में हम पड़ गए हैं कि आज हम सब यानी कि हमारा तरक्की जरूर हुआ हाँ. हम सब के पास अब मोबाइल फोन होते हैं पर और हमारे टेक्निक जो है टेक्नोलॉजी जो है आगे बढ़ रहे हैं हम लोग सोचते हैं कि बड़ा तेजी से बढ़ रहे हैं पर ये सब तो कितने साल कितने वर्षों ये कि समय से अगस्त्य ऋषि ने खोज करके और रख दिए थे
3: जी
2: और आज हमारे पास वैसे तो देखा जाए तो हमारे वैज्ञानिक लोग रोज निसंदेह और आगे बढ़ रहा है अपना टेक्निक को बढ़ा रहे हैं अब देखिए कि कुछ साल पहले एक भारत से एक काम हुआ था यहाँ हॉलैंड में और जो डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी में टेयू डेल्फ्ट में और वो उसके बारे में काम हुआ था जो टुक टुक पहले होते थे ना भारत में
3: अब तो भी होते हैं भारत में टुक टुक
2: पर अब वो बन गया सब इलेक्ट्रिक
3: हाँ
2: वो यहाँ के सहयोग से बनाया गया है उस कुछ 15 साल पहले के बात है
3: जी
2: और अब देखो तो बस पोल्यूशन सब खत्म और कितना साफ सुथरा होने लगा है
3: हाँ धीरे धीरे पोल्यूशन में कमी आ रही भारत में और अच्छा
2: ये बात हुआ कि पर अभी तक हमें जिस बात के जो हम इस बात को सोचते हैं कि जो आज से उतने पहले उतने सालों उतने समय पहले जो अगस्त्य ऋषि ने इस बात को हम सब के लिए खोज के रख दिए थे तो अभी तक हमारे पास एक मोबाइल जो होता है तो वो 5 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है
3: हाँ
2: तो कुछ अब भी कम है
3: हाँ अभी कम
2: अभी कुछ कम है
4: हाँ तो इसका खोज करना पड़ेगा अभी तक मतलब नो इन ऑनटिकलिंग लाइफ है
2: जी हमारे टेक्नोलॉजी वाला है वो खोज कर रहे खोज करते रहते हैं देखो अब तो समस्या ये हो गया है कि राजेंद्र जी इस पे जब देखा जाए ना तो अब देखिए गाड़ी आजकल बन गया है बैटरी से चल रहा
3: हाँ
2: यही टेक्नोलॉजी
3: है जो कि ऋषि जी ने बहुत पहले वो कर दी थी लेकिन अब
2: प्रयोग हुआ
3: प्रयोग अब हो रहा है
2: अभी तो हमारे हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक है अप्रैल महीना में पहला बार वो लोग इलेक्ट्रिक प्लेन जो 68 किलोमीटर यहाँ हॉलैंड में उड़ा दिए 68 किलोमीटर का फ्लाइट बैटरी द्वारा उड़ा दिए पर वो लोग भी और भी खोज कर रहा है और भी खोज कर रहा है कि कैसे और आगे कर पाएंगे ये तो अभी वो कहते हैं कि ये नामुमकिन है कि कभी ऐसा होगा कि सिर्फ बैटरी द्वारा और बड़े बड़े जहाजों उड़ पाएंगे ये मुमकिन वो कहते हैं कि यह नामुमकिन है
3: नहीं वो जब पहले जहाज बना जब जहाज नहीं था तो उस समय ये नामुमकिन था कि कुछ चीज उड़ भी सकती है क्या लेकिन जब जहाज बन गया तो मुमकिन हो गया तो आज लोगों को वो लगता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं लेकिन जो नहीं है उसके लिए बहुत बड़ी बात लगती है और जब वो हो जाती है तो छोटी लगती है।
4: पर
3: धीरे धीरे रिसर्च इसी प्रकार होता रहता है।
4: हाँ, पर राजेंद्र जी ऐसे भी है ना, रामायण के समय पे भी ऐसा हुआ ना कि राम विमान में बैठ के आए थे अयोध्या में।
3: हाँ, तो उसी जो विमान है उसी की जो बात चली उसी के आधार पर प्लेन बना।
4: अच्छा,
3: आपको एक जानकारी और मिल जाएगी इसमें कि जो प्लेन बना है वो जो सबसे पहले जिन्होंने प्लेन बनाया तो जब उन्होंने सुना कि लंका से राम पूरी सेना लेके एक विमान में अयोध्या पहुंचे थे तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब उन्होंने रिसर्च किया इस बारे में तो फिर उसी के आधार पर प्लेन बना।
2: कितने साल पहले के बात है। और दोस्तों सुनने वालों, यहाँ पर हम सब जो संदेश लेकर आए हैं कि हमारे अभी हम सोच रहे कि हम पहुंच गए जहां हमें पहुंचना है, पर वैज्ञानिक लोगों को अभी ढेर सारे चीज खोजना है जिसे हमारे संत मुनि तथा हमारे ऋषि अगस्त ने किसी और काल में इस बात को बारे में वर्णन कर चुके हैं और अब धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें सामने आ रहा है।
3: अन्न ने जल भंगोस्ति प्राणो दानेशु वायेषु एवं शांतानाम कुभाना संयोग कार्यकृत समामृता। अगस्त्य संहिता से ये दो श्लोक हैं। महर्षि अगस्त्य कहते हैं 100 कुंभों अर्थात उपरोक्त प्राक प्रकार से बने तथा श्रृंखला से जोड़े गए 100 सेलों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु यानी ऑक्सीजन तथा उदान वायु यानी हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। तो कृतिम स्वर्ण रज लेपत सत्कृति रुच्यते यवछार मयोधानो सुसक्त जलसंधितो आच्छादयति तस्मात्राम स्वर्णेन रजतेन वा सुवर्णलिप्तम तत्मात्रम सातकुम्भिति स्मृतम। ये भी अगस्त्य संहिता से लिया गया है। अर्थात कृत्रिम स्वर्ण अथवा रजत के लेप को सत्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुसक्त जल यानी तेजाब का घोल, इसका सानिध्य पाते ही यवछार यानी सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत से ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को सात कुंभ अर्थात स्वर्ण कहा जाता है। इसका उल्लेख शुक्र नीति में भी है। तो विद्युत तार आधुनिक नौका चलन और विद्युत वाहन संवेद वाहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है वैसे प्राचीन काल में भी बनती थी जिसे रज्जू कहते थे।
2: राजेंद्र जी क्यों ना हम एक सुंदर सा नगमा की ओर, क्योंकि
4: गीत के ओर बढ़ने से पहले और जैसे हम यहाँ सुन रहे हैं ऋषि अगस्त मुनि के बारे में कि इतिहास कितना अच्छा चला है ना, आज लग चल रहा है, तो उस पर मुझे एक शायरी याद आ गई।
3: जरूर जरूर जरूर।
4: जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलता है, और जो कभी नहीं नहाते वो परफ्यूम बदलता है।
2: बड़ा सुंदर संदेश राजेंद्र जी, आप कुछ कहने वाले हो इस पे, क्योंकि परफ्यूम कहते हैं इत्र का ना।
3: हाँ, हम तो यही कहेंगे कि परफ्यूम बदलने की जरूरत नहीं है, रोज नहाना चाहिए और जब नहाएंगे तो परफ्यूम की जरूरत नहीं होगी।
2: हम एक गीत के ओर बढ़ रहे हैं राजेंद्र जी।
3: जी।
5: नफरत

0: संदेश यानी इस गीत में कितना है ना राजेंद्र जी, ये जो आपने संदेश सुनाए, हम सब कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे। पंडित जी आप इस साइड टेलीफोन पे हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं आपको लाइव लाने को। हाँ पंडित जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपका लाइव सेंडिंग में लाने को, पर अभी
1: हाँ आज का जो हमारा विषय है, जय भगवान रक्षक रे, आज का जो हमारा विषय है ऋषि अगस्त्य जी का, हम चाहेंगे कि आप इसमें कुछ और गूढ़ जानकारी देंगे जिससे कि सब लोगों को इसका फायदा हो। जी
2: ये तो आज जा करके अगस्त मुनि की कथा मैंने सुना
1: जी,
2: नहीं आप लोग स्टूडियो में तो बड़े विद्वान लोग हैं तो हम क्या कहें। सबसे पहले मैं अपने शांता जी से बात कुछ करना चाहता हूँ।
1: हाँ बताइए, शांता जी सुन रही हैं।
2: सबसे पहले कि बड़ी खुशी की बात है कि शांता का बकरी ने अंडा दे दिया, तो शांता जी का बकरी कई अंडा दिया है?
1: हाँ वो एक पुरानी कोई बात थी जो कोई बच्चे के बारे में उन्होंने बोला था कि उसका नाम मुर्गी का नाम बकरी रखा था, इस प्रकार से था।
2: अच्छा।
1: हाँ आपने वो सुना होगा पूरा।
2: और अभी हमारे भैया संजय जी ने
1: जी
2: कहा कि ये इलेक्ट्रिक का गाड़ी चल पड़ा है।
1: हाँ
2: लेकिन मैंने और पढ़ा है कि गाड़ी पानी वाला भी बन चुका है और दलव कोशिश कर रहा जो घाम से सूर्य से चलेगा।
1: हाँ सौर ऊर्जा का चलेगा लेकिन उसमें थोड़ा भी पूरा मार्केट में आने में टाइम लगेगा।
2: भैया राजेंद्र सिंह जी और संजय और शांता जी, ये तो मजाक था ना, जानते हो कि ये पंडित तने मजाक उजाक करते हैं। कृष्ण भगवान के पोता हैं, कारण कृष्ण भगवान के पुत्र के नाम प्रद्युम्न था, प्रद्युम्न के बेटा का नाम अनिरुद्ध था
1: जी।
2: तो अनिरुद्ध थोड़ा मजाक भी करता है लेकिन सीरियस बात जो है कि ये जो हमारे अगस्त मुनि हैं, अभी आप भी कहे हैं कि अगस्त मुनि समुद्र का पानी पीकर आचमन करके समाप्त कर दिया।
1: हाँ।
2: लेकिन आप बताए नहीं कौन समुद्र कहाँ का समुद्र। तो ये कार्य शुरू होता है, ये जा करके शुरू होता है जब जा करके राजा दिलप सब दिलप राजा कई तप करते करते थक गए तो भागीरथ जी ने अब जाकर को तप किया। अब भागीरथ जी को विष्णु भगवान जी ने अंगूठा से निकाल कर गंगा जल दे दिया
1: जी।
2: ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में नहीं रोक पाया, शिव जी ने कैलाश पे नहीं रोक पाया। और उधर ब्रह्मा जी ने सोचे कि मैं कोई भक्तों पठाऊ दुनिया में जो भक्त का प्रचार हो सके
1: जी।
2: तो ब्रह्मा जी ने मनुष्य पुत्र उत्पत्ति किया, सात पुत्र ना, जैसे अगस्त मुनि है, विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि और मुनि कितने हैं, तो ये सात पुत्रों को उत्पन्न किया। तो सात पुत्र ने आ करके अब ऋषि केस में स्थान लिए।
1: हाँ ऋषि केस, इसलिए वहां का नाम ऋषि केस है।
2: हाँ ऋषि केस
1: जी।
2: तो ऋषि केस में बड़ा नदी बह रहा था, तो अगस्त मुनि को ये बात मालूम था कि भागीरथ ने गंगा को प्राप्ति कर लिया।
1: हाँ,
2: तो सोचे गंगा जी कहां से पार होंगे। तो अगस्त जी ने ये बात को, ये ब्रह्मा जी का मनुष्य पुत्र है, तो ये बात सोच करके गंगा वहां नदी जो बह रहा था तो गदी में गया आचमनी करने। तो पहला आचमनी जो किया तो गंगा पानी बाकी जो रह गया तो जम गया।
1: हाँ,
2: बर्फ हो गया। तो दूसरा आचमनी जो किया गंगा वो बर्फ को लेकर के, तो बर्फ गल करके थोड़ी पानी रह गई समुद्र में। और तीसरा आचमनी जब अगस्त मुनि ने किया तो सारा पानी सूख गया। और अगस्त इसलिए किया कि जानता है कि अभी गंगा भागीरथ जी गंगा लेके आएंगे। तो अगस्त मुनि अपने सातों भाइयों को लेकर के वहीं पर तप करने गया। कहें यही पर हम लोग बैठ के पूजा पाठी करेंगे
1: जी।
2: तो गंगा जी को ना ब्रह्मा रोक पाया, ना विष्णु रोक पाया, ना शिव जी रोक पाया, फिर आ गए
1: जी।
2: तो ऋषि केश के मोड़ पर जब आया तो हिमालय पहाड़ बन के बढ़ गई।
1: हाँ।
2: तो यहाँ गंगा नहीं निकल पाएगी, लेकिन कहा पहाड़ में उस पार से घुस के गंगा इस पार निकल गई।
1: गौमुख में,
2: जब से निकली तब से आज दिन तक
1: जी
2: गंगा जी वही बहता है।
1: हाँ,
2: एक तरफ खाली, दूसरा तरफ नहीं, कभी घटता बढ़ता नहीं कि चढ़े पानी फिर उतरे।
1: हाँ, बरसात में थोड़ा चढ़ जाता है पानी।
2: हाँ, का
1: बरसात में जो गंगा का पानी तो उतना ही रहता है, लेकिन जब नीचे ऋषिकेश और इधर हरिद्वार में आता है उस समय थोड़ा पानी यहाँ बढ़ जाता है
2: ना। वो इसलिए बढ़ जाता है जब झूरा के समय आता है
1: जी,
2: मई से सितंबर तक।
1: हाँ,
2: तो कैलाश का पहाड़ का बर्फ जो है वो गलता है।
1: हाँ,
2: तो वो गंगा नदी में आ जाता है
1: जी।
2: तो वहां पर जाकर के अगस्त मुनि ने ये बात का विचार किया कि सातों भाइयों से कि हे भाइयों, यही हम लोग तप करें। बैठकर ऋषिकेश में तप करने लगा, जो उस समय जितना पहाड़ों का था सबको जाकर के अगस्त ऋषि ने अहंदुलवाश ये जाकर के उनको वहां पर सब पहाड़ों को छोटा कर दिया
1: जी।
2: अगस्त मुनि फिर आगे चल के त्रेता युग की कथा है कि श्री रामचंद्र भगवान जब जाकर रावण पर आक्रमण करने के तैयार हुआ, तो अगस्त मुनि ने रामचंद्र जी को मदद किए कि जो रावण पर विजय को प्राप्त कर सके। और फिर महाभारत में और अनेकों इतिहास में अगस्त जी एक जहीन जो सात भाइयों में से कि जो पलंकाइन यानी जो जा करके नहुषा को जाकर को मत कम किया, कारण नहुषा जो था तो इंद्र का पत्नी को जाकर को हरने को कोशिश किया, कारण इंद्र का पत्नी का नाम सच्ची देवी थी। तो उनको जाकर को बचाने के लिए अगस्त मुनि ने बहुत से मदद किए
1: जी।
2: और अगस्त मुनि का धर्म था हिंदू, हिंदू माने हिन माने हिंसा, दू माने दूर, तो हिंसा से दूर रहने वाला वो हिंदू कहलाता है। अगस्त मुनि के पत्नी था जिसका नाम लुपार मुद्रा था
1: जी,
2: और लुपार मुद्रा जी थे और उनके साथ एक बेटा पैदा हुआ था अगस्त मुनि को जिसका नाम दर्हाशियु, और ये जा करके बहुत से इतिहासों में ये कथा आता है
1: जी।
2: जैसे जा करके तमिल में अगस्त महीने को अगस्त्यम कहते हैं
1: जी,
2: इंडोनेशिया में अगस्त्या पर्वा कहते हैं।
1: हाँ,
2: तो तमिल के सिद्धधार जा करके श्री विष्णु जी ने और जा करके और सहयोग दिया कि अगस्त मुनि जितना चीज दुनिया में किए हैं, कहूंगा तो आप लोग का समय भी ज्यादा निकल जाएगा।
1: हाँ,
2: तो इससे ज्यादा न कहते हुए मैं छोरी में समाप्त करता हूँ
1: जी।
2: अगस्त मुनि भगवान विष्णु का, ये ब्रह्मा जी का मनुष्य पुत्र है जो अपने मन से सोचा था ऐसा ऐसा बनाऊ, तो अगस्त मुनि के बनाया कि जो तेज में, जैसे संजय ने कहा है कि बिजली जल जाता है स्ट्रोम से, एक जगह फैब्रिक है सारा हॉलैंड भर में स्ट्रोम बिजली देता है, तो ऐसा चीज बनाए जैसे अभी बताए इलेक्ट्रिक का गाड़ी बन गया
1: जी,
2: पानी से गाड़ी चलने लगा, ये जा करके अभी बिजली से सूर्य चंद्र के किरणों से चलने लगेगा, तो ऐसे ऐसे। और ये कहूँ भैया राजेंद्र सिंह जी,
1: जी
2: कि अगर मैं कहूँ तो ये कथा समाप्त नहीं होगा रात भर में।
1: हाँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप थोड़ा शॉर्ट में करें।
2: हाँ, तो इसी से मैं शॉर्ट में कह करके यही कहूंगा कि सबको अच्छा है और ठीक है, और जितने लोग हैं कोई को जांच पड़ताल बाकी जानना चाहिए और आप लोग से कांटेक्ट करें तो इसका संबंध होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पंडा जी, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी और अगस्त्य मुनि के बारे में और गंगा के बारे में और सप्त ऋषि के बारे में, हम हमारे सारे श्रोताओं को इसको बड़ा लाभ मिला होगा, लाभ मिलेगा आपकी जानकारी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ना मेरा धन्यवाद नहीं है रजत जी, धन्यवाद तो आपका है बेटा को और शांता देवी को कि जिन लोगों ने ऐसे कार्यक्रम प्रोग्राम और हिंदुस्तानी रेडियो का मालिक जो है उनको धन्यवाद है कि जो ऐसे रेडियो बना करके ऐसा संदेश सारा दुनिया भर पसार रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हमारे पंडित जी ने हम सबको कुछ ना कुछ और काफी संदेश ना कुछ काफी संदेश हो गया ना राजेंद्र जी, क्योंकि अभी तो कुछ बाकी था आपको भी सुनाने को राजेंद्र जी, और शांता जी का बाकी है जो वो नई दलांश में लिख करके आए हैं।
1: उससे पहले हम एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ते हैं। जब

0: तो संजय जी बताइए, आपकी इतनी नदियां प्यारी है जहां माता कह के बुलाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: क्या कहो राजेंद्र जी, इस गीत को सुन करके और मन में बड़ा, आपने खुद ही देखा कि
0: जी,
1: तो हम सभी सुनने वालों को भी यही चाहता हूँ कहने को कि आप भी इस गीत को सुन करके और बड़ा प्रसन्न हुए होंगे, क्योंकि हमारे पास शांता जी कुछ नई दलांस में भी उसके बारे में बताएंगे, क्यों हमारा जो ये ज्ञान जो हम सबको आज मिले है ऋषि अगस्त्य के बारे में। राजेंद्र जी, शांता जी की ओर बढ़ने से पहले कुछ संदेश और है जो आप हम सबको सुनाने वाले हैं ऋषि अगस्त्य जी के?
0: जी, थोड़ा सा संदेश और रह गया और हम चाहेंगे कि उसको सब लोग सुने। नवभि स्थब्नुभि सूत्रम सूत्रेस्तु नवभि गुणा गुणेस्तु नवभि पाशो रश्मि रस्ते नवभेत नवाष्टम सप्तसे संख्ये रश्मि भी रज्जवा स्मृतः। नौ तारों का सूत्र बनता है, नौ सूत्रों का एक गुण, नौ गुणों का एक पास, नौ पासों का एक रश्मि और नौ आठ सात या छः रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है।
1: तो अब इसे थोड़ा से हम लोग के अपन हिंदुस्तानी हम बोलना।
0: हाँ, इसके मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करी थी, जो बिजली की तार की बात करी थी, उसके बारे में बात है। और आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे, इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों का आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया है।
1: यानी कि जो हम लोग जो जानीला लुख बलोन ना शांता जी,
2: जी
1: लुख बलोन, तो ये पहले का बात है।
0: जी, वायुबंधक वस्त्रेणा सुबद्धोत नमस्तके उद्यानस्य लघुत्वेना विभत्यार्कास्यानकम्। अर्थात उदान वायु हाइड्रोजन का वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विदायु में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ाया जा सकता है। तो यानी कि फूंक जो हम गुब्बारे में भरते हैं वो हाइड्रोजन है, उसको किसी चीज में बांध दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो वो उड़ती है, ऊपर आकाश में उड़ती है। तो इसलिए गुब्बारा ऊपर उड़ता है। ये भी अगस्त्य ऋषि जी ने इसका बनाया, निर्माण किया था,
1: बताया था।
0: हाँ,
1: तो ये हम सब हीलियम कहते हैं ना, हीलियम खास मेरे ख्याल से, तो जिसे आप लुख बलोन आदि पर राजेंद्र
0: जी। हाँ, लेकिन जो गुब्बारा बना हुआ तो बाद में बना, लेकिन उस समय पहले वायु पूर्णम वस्त्रम,
1: एक वस्त्र से बनाया जाता,
0: वस्त्र से बनाया जाता था, उसको बोलते थे वायु पूर्णम वस्त्र, जिससे जिस वस्त्र से हवा भी बाहर नहीं आती आ सकती थी, ऐसा वस्त्र प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती है। और उस वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता में है। श्री कद्रुम कद्मा वाभ्रम भयात्सौ जेल स्त्री त्रिफले दोषे तस्तेजम स्तोतम स्तता सम्यगम सक्रा सुक्त चूर्णम मिश्रितम वारिणाम सुरसम कुंटनम कुत्वा वंशासी स्त्री सुधी। अगस्त्य संहिता में लिखा है, अर्थात रेशमी वस्त्र पर अंजीर कटहल आम अक्ष कदम मीरा बोलेन वृक्ष के तीन प्रकार और दाले इनके रस या सत्व के लेप किया जाते थे। तत्पश्चात सागर तट पर मिलाने वाले शंख आदि और शर्करा को घोल यानी द्रव सीरा बनाकर वस्त्र को भिगोया जाता है, फिर उसे सुखाया जाता है, फिर इसमें उदान वायु भरकर उड़ाया जा सकता है। उसमें बहुत सारी चीजें, इस प्रकार की चीजें लगती थी तब वो वस्त्र बनता था। फिर उसमें सुखाया जाता था, फिर उसमें जो उड़ने वाली वायु नाइट्रोजन वो भरी जाती थी और फिर उसको उड़ाया जा सकता था। लेकिन आजकल तो बहुत ही सरल रूप में गुब्बारा बन जाता है, गुब्बारा में हवा भरो और वो उड़ने लग जाता है।
1: आप गुब्बारा कहते हैं पर हम लोग जाने के गुब्बारा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
2: लुख बलोन
1: ना।
0: हाँ, बैलून इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में गुब्बारा बोलते हैं।
1: गुब्बारा
0: यानी कि उसमें हवा भरी और आकाश में उड़ने लग जाए।
2: निखरो तो बलोन है। अभी तो शुरू होएगा सोमर, तो आप देखोगे
1: निकलेंगे,
2: बास्केट नीचे लगेगा, ऊपर बलून रहेगा।
1: राजेंद्र जी, ये यानी कि ये टेक्निक जो उन्होंने हम सबको आज से कितने कितने कितने साल पहले के, और जो अपने अगस्त्य की
0: अगस्त्य ऋषि अगस्त्य संगीता
1: अगस्त्य संगीता में वर्णन कर चुके थे, तो आज तक हमारे और वैज्ञानिक लोग इस समय तक भी आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है पर अभी पहुंचे नहीं। संता जी, जो हम सबके कुछ और संदेश सुनाने वाले हैं।
2: हाँ जी, तो हम थोड़ा से आपको नीदरलैंड्स में सुनाएंगे इसके बारे में, जो कि हमारे राजेंद्र जी ने हिंदी और संस्कृत में जो सुनाई आपको, तो हम कोशिश करेंगे इसको छोटा रूप में आपको भी सुनाएंगे। अगस्त्य मुनि इज द सोन फान उर्वशी एंड वरुण। अगस्त्य मुनि इज एन फान द बलांगरेक्स्ट मुनि इन एथ हिंदू धर्म। अगस्त्य मुनि सैन फ्रॉव हेट लोपो मुद्रा। In Ramayan Mahabharat kan men terugvinden, dus lezen over Agastya Muni. Uit de zeven rishis is hij, de Agastya Rishi, een van hun. Ja, het is een van hun en wordt gezegd dat hij meer dan 5000 jaar heeft geleefd. De Sapta Brahma erkennen de namen van de zeven rishis, oftewel Sapta Rishi genoemd. Dat zijn Agastya, Atri, भरद्वाज, गौतम महर्षि, जमकादनि, विश्वामित्र और एन वशिष्ठ जी। अगस्त्य जी द वैस फान हेट ऑल द इंडिया वॉज एन फान द वैसन कलारी पायातु फान लॉर्ड मुरुगन लेर द कैनन एन आन द वेरल्ड बकेंट माकते। Gezien hun toewijding worden ze ook op Java en Sumatra vereerd. Dit zuidelijke medische systeem is ook de vader van Siddhivaidyam. De Agastya Samhita is een boek waarover wij nu een beetje gaan hebben. Agastya Samhita. Verrassend genoeg worden in dit boek bronnen die verband houden met energieopwekking. Dit verrassend en bewijs dat zijn kennis in India bestond. Ja, luisteraar, u hoort het, dit bestond al. Maharishi Agastya was één Vedische wijze die elektriciteit had uitgevonden. Agastya Samhita, het boek, geeft ook details over het gebruik van elektriciteit voor galvaniseren. Agastya Muni bedacht de methode om koper of goud of zilver op batterijen te polijsten, waardoor dat Agastya ook bekend staat als de Kumbhodbhava, dat betekent batterijbeen. Hot balloons flying in the sky. You know, de luchtballonnen. Hot balloons flying in the sky. Aangezien hiervan heeft Agastya Muni ook de techniek genoemd van het vliegen met ballonnen in de lucht en het besturen van vliegtuigen. Lucht- en ruimtevaartkleding. Dit wil zeggen, als waterstof wordt gestopt in luchtbeperkte kleding, wordt gebruikt in vliegtuigelektronica. Dat wil zeggen, als de waterstof stevig in het doek is gebonden, kan deze de lucht in worden geblazen. Vayupuran kleding. In de oudheid werd zo'n kledingstuk gemaakt waarin lucht kon worden gevuld. De volgende methode om dat kledingstuk te maken is in het boek Agastya Samhita. Je kunt het terugvinden in Agastya Samhita, in dat boek. Agastya Rishi, hij hielp Ram. Ram is avatar van Vishnu Bhagwan. Hij hielp Ram in zijn strijd tegen de demonenkoning Ravan. De koning van Lanka werd gedood door de pijl van Agastya Muni, afgeschoten door Ram. Met andere pijlen groeiden de 10 koppen van Ravan meteen weer terug. De speciale pijl was gemaakt van zonlicht en vuur en is even zwaar als de bergen Meru en Mandrachal. Ja, het is even zwaar als die twee. U hoort het, lieve luisteraars, wat onze Agastya Muni allemaal heeft uitgevonden. We moeten wel trots zijn. Het astronautenpakken, luchtballonnen, batterijen, vliegtuigen. Wat met waterstof te maken heeft, kunt u dat even het is heel geweldig.
1: आपने नीदरलैंड्स में भी जैसे कि राजेंद्र जी भारत देश से और हिंदी में ये वृतांत को सुनाए सारा वृतांत जो अगस्त्य ऋषि के दोस्तों सुनने वालों ये फाहन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम इस बात को जानते हैं कि हमारे अगस्त्य ऋषि जो आज तक शायद हम नहीं जानते रहे होंगे कि उनके वृतांत उनके और जो लिखे हुए कितने और युगों पहले से और आज अब कुछ कुछ और उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने लेते हैं। हम एक देश में रहते हैं हॉलैंड में और यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे वैज्ञानिक लोग भी लगातार खोज में है और ये खोज कर रहे कि अब कम से कम जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स आदि है तो उसमें वहाँ पर और फॉर कोर्टा अवस्थान बैटरी द्वारा या फ्लिक्ट बनाया जाए और उसे कम से कम 500 किलोमीटर तक उसे उड़ा सके और आगे के चलकर के लोग खोज में है कि धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिक यहाँ तक भी पहुँच सके कि हम 1000 किलोमीटर तक बैटरी द्वारा 4 से 9 जने तलक यानी कि 4 से 9 पैसेंजर तलक और ऐसा प्लेन बना सके।

0: अब हमारा समय पूर्ण होने की तरफ आ गया है और अब हम विदा लेंगे आपसे और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय इसी बार को। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनने वाले और ज्योति का प्रकाश पर्व कार्यक्रम को सुनने वालों के लिए मेरा दिल से हार्दिक अभिनंदन और प्यार।
1: हाँ जी प्यारे सुनने वालों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं संपूर्ण सागर का एक बूंद हूँ, मैं तेरे पलकों का बस एक अमूंद हूँ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के प्यारे और सारे सुनने वालों को, जैसे आप सुन रहे हैं हमारे राजेंद्र जी से, तो हम दिल से आपको धन्यवाद कहती हूँ साथ देने और सुनने के लिए, प्रोग्राम पसंद करने के लिए। आज के लिए आपसे हम जुदा हो रही हूँ, फिर से मिलने के लिए तो स्वीकार कीजिए सभी का शांता जी के राम राम प्रणाम यहाँ से।

देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। धुन को सुनकर हमें ये बात को पता चल गया है कि हम अपने कार्यक्रम के समाप्ति की ओर आ गए हैं। आज का विषय जो इतना मुश्किल विषय था, हमारे भाई राजेंद्र जी जो कितने सुंदर स्वरूप से और तैयार करके और हम सबको सुनाए, शांता जी जो कितने खोज किए इसके बारे में और सुंदर सुंदर गीतों को लेकर के हमारे साथ और ये कार्यक्रम में सहयोग दिए, पंडित जी जो अपने ओर से पूरा वृतांत पूरा कथा सुनाए, सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए और धन्यवाद देते हुए कि मैं हूँ आपका सेवक संजय, आशा यही रखता हूँ कि आप ये कार्यक्रम सुनते रहना और सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। नमस्कार।

हम यार है तुम्हारे, यकीन कीजिए यकीन कीजिए। हम यार है तुम्हारा कि यकीन नहीं है तो आप तार करके अभी बातचीत कर सकते हैं यकीन के साथ। दोस्तों हम यार है तुम्हारे।

हम यार है तुम्हारे। यकीन कीजिए, यकीन के साथ मैं भी कहता हूँ कि हम यार है तुम्हारे। याद आ रहा है, तेरी याद आ रहा है दोस्तों, उन दिनों के बाद है जब बप्पी लहड़ी ने कदम रखा था सॉन्ग वर्ल्ड में। तो मिथुन का फिल्म था डिस्को डांसर, इसी फिल्म का सॉन्ग है। और बात यह है कि उन दिनों में के बात है जब किशोर कुमार एक टॉप पे था दोस्तों, हर एक फिल्म में उसका गीत होता था। लेकिन किशोर कुमार मिथुन के लिए गीत नहीं गाना चाहता था। जो फिल्म में मिथुन काम करते थे उसमें किशोर कुमार कभी गाना नहीं गाना चाहते थे। बात यह था कि किशोर कुमार का औरत दोस्तों का बीबी जोगीता बली जो थी, उन्हें मिथुन हम खोल के हिंदुस्तानी बोलीला, यहाँ देखिए उसे फंसे है, ओके मिथुन भगा ले गया रहा। तो इसी कारण ना मिथुन के हर एक फिल्म जब निकलता था तो किशोर कुमार इनकार कर देते थे, उसका फिल्म में गाना नहीं पेश करते थे। फिर भी पपीरा, जी हाँ दोस्तों, पप्पी लहरी के नाम से हम ज़्यादा अभी बोल उन्हें पुकारते थे, उन्हीं का सॉन्ग है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

आ रहा है पपीरा बप्पी लहरी दोस्तों। पप्पी लहरी भी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पाया और पप्पी लहरी जितेंद्रा का 12 हिट फिल्मों में भी गीत को पेश किया। सभी फिल्म से एक फिल्म था फिल्म हिम्मत वाला, हम सब मिलकर सुनेंगे। नैनो में सपना, किशोरदा, लता मंगेशकर और बप्पी सभी के आवाज में आप सॉन्ग सुनेंगे।

सज्जना पे दिल आ गया फिल्म हिम्मत वाला। अभी जो सॉन्ग भी आपने सुना वो किशोर और लता का गीत था, लेकिन बप्पी लहरी इस फिल्म में भी प्लेबैक किया है। बप्पी लहरी जी हाँ दोस्तों, बप्पी लहरी को नहीं 66 तक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इनका नाम आया, इसलिए कि एक साल के अंदर मेरदान होने तक फिल्म जी हाँ दोस्तों 180 से ज़्यादा गाना एक पेश किया है एक साल के अंडर में। मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी के आवाज़ में एक सॉन्ग और हम सब मिलकर सुनेंगे।

इतना कमजोर मत बनो, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए।

मेरे नसीब में कोई नहीं। ये गीत दोस्तों जो मैं पेश करता हूँ, आप ये फिल्म जो देखे होंगे, हेमा मालिनी का फिल्म है और उन दिनों में टॉप एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी। आप जानते हैं हेमा मालिनी का शादी नहीं हुआ लेकिन धर्मेंद्र से उनका शादी हुआ है।

Ja, Pika, heb je station Far Horn Hindustani Radio. आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ. दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है. मैं सोचता हूँ दुनिया में हर एक इंसान को धोखा जो एक बार होगा. जी हाँ दोस्तों, हर एक इंसान धोखा दुनिया में जरूर एक बार खाया होगा. तो अरिजीत बर्मन का सॉन्ग है. राजेश खन्ना मुमताज फिल्म में काम किया और आप जानते हैं सुपरस्टार राजेश खन्ना. उन दोनों में एक राजेश खन्ना के अलावा एक दूसरा स्टार नहीं था जो इतना भीड़ भड़क्का से यहाँ पर फिल्म पेश करते थे. अब मुमताज जो कदम रखा फिल्मी दुनिया में तद्दारा सिंह के साथ वो काम करते थे, तो उसके बाद ये भी आगे बढ़ना चाहता लेकिन बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर्स इन्हें नहीं लेना चाहता था. सोचा था ये दारा सिंह के साथ फिल्म बनाते हैं, एक दूसरे अलहदा तरह के फिल्म है. फिर भी जब ये कदम रखा दोस्तों मुमताज, तो उन्हें आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते चला गया एक टॉप एक्ट्रेस भी थी उन दिनों में. राजेश खन्ना एंड मुमताज का फिल्म दुनिया का सॉन्ग है. दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता था.

दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है दोस्तों, एक गायकी है ये है दोस्तों, वो गायक जो अपने मीठी आवाजों से फिल्मी दुनिया में हर एक लोग को पागल बनाया, जी हाँ पागल रखा, पागल बना के छोड़ा, वो थी लता दीदी। जब फिल्म वो कौन थी बना और ये गीत जब गाया लग जा गले फिर ये हंसी रात हो न हो, तो फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा ये गीत अच्छा नहीं लगता है, फिर भी लोग के कहने पर ये गीत रख दिया इस फिल्म में और ये गीत जाकर एक हिट, ये सॉन्ग जो है लग जा गले एक प्राइज भी पाया इसी फिल्म में। हम सब मिल के सुनेंगे नाइटिंगेल लता मंगेशकर के आवाज़ में ये सॉन्ग।

लग जा गले के बाद दोस्तों फिल्म दीदारी यार, फिल्म दीदारी यार एक फिल्म जो जितेंद्रा ने खुद लिखा और उसमें काम किया ऋषि कपूर के साथ। जितेंद्रा ने राफी का सॉन्ग इस फिल्म में प्लेबैक किया और एक्ट किया और ऋषि कपूर किशोरदा का गाया हुआ गीत फिल्म में एक्ट किया। तो बात यह है दोस्तों, ये फिल्म बनाते बनाते बहुत दिन लग गया, फिर भी फिल्म के शुरुआत में जब बातचीत हुआ तो 4000 फिर दर्शन के बातचीत था एक इस फिल्म में गीत गाना गाने के या गाना पेश करने को। तो राफी साहब को 4000 मिलता, किशोरदा को भी 4000। फिर भी ये फिल्म बनते बनते कई साल बीत गया। जब फिल्म तैयार हो गया तो जितेंद्रा ने अपन मैनेजर से कहा, जाओ किशोरदा से बातचीत करो, कितना पैसा चाहिए उन्हें देने के। तो किशोर कुमार ने कहा, मुझे 20,000 रुपये चाहिए। तो जाकर जितेंद्र से कहा, जितेंद्र 20,000 रुपये दिया और जाकर किशोर कुमार को दे दिया। और फिर 20,000 दिया, जाओ इन्हें राफी साहब के दो दो। तो राफी साहब के जो पैसा 20,000 लेके गया, तो राफी साहब ने पैसा देखा और 4,000 जेब में रख लिया, 16,000 फिर दे दिया मैनेजर को, जाओ जीतू को ये पैसा दे दो। तो वैसे तो जितेंद्रा और राफी दोनों दोस्त थे और वह उसी दिनों से लेकर जब तलुक राफी साहब जीवित था तब तलुक जितेंद्रा और राफी एक बड़े दोस्त आपस में थे दोस्तों। और आप जानते किशोर कुमार के हरदम पैसा काम रहता, इसलिए कि उसका शादी 4 बार हुआ और राफी साहब को शादी, उसका शादी राफी का ब्याह तो सिर्फ दो बार हुआ, लेकिन किशोर चोई माल जैसे तो चाहता है एंगल चोई माल फिर दर्शन आँख दर्शन ले के मारू दिन तक दर्शन लेके जेब में रख लिया। उसी फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूँगा, फिल्म दीदारी यार का सॉन्ग है किशोर कुमार एंड लता, दोनों के आवाज़ों में आप सुनेंगे।

और न्यूज़ स्टैंडर्ड पर आप ट्यून है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, वाह हिंदुस्तान रेडियो हमेशा आपके साथ। सॉन्ग में पाकिस्तानी सांगर अतीफ असलम के आवाज में आप सभी को लिए पेश करूंगा। एंटीक हिंदी सॉन्ग कलेक्शन से मैं निकाल के आपके घर तक पहुंचाऊंगा। आप जहां पर भी रेडियो सुनते होंगे आपके कानों तक मैं पहुंचाऊंगा अतीफ असलम का सॉन्ग।

आतिफ असलम ये न सिर्फ एक सानर लेकिन एक एक्टर भी पाकिस्तानी के पाकिस्तानी फिल्मों में भी आतिफ असलम ने काम किया है। अभी एक दूसरा गीत मैं आतिफ असलम का आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन मैं चला जाता हूँ बाबुल सुप्रियो के सॉन्ग के ओर। और बाबुल सुप्रियो ये भी एक काफ़ी मशहूर गायक है, उसके आवाज़ में आप सुनेंगे मेरी तरह तुम।

बाबुल सप्रियो और साथियों की आवाज़ में भी आप गीत को सुना। मैं वापस चला जाता हूँ अतीफ असलम के एल्बम के ओर। और अतीफ असलम 2005 में बॉलीवुड का प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने उन्हें मौका दिया फिल्म सहर में एक नंबर पेश करने के लिए। और वो था ये गीत दोस्तों, मैं आपको सुनाऊंगा वो लम्हे वो बातें अतीफ असलम के मीठी आवाज़ में आप सुनेंगे।

आसिफ असलम के आवाज में वो लम्हे वो बातें। अब की बार मैं चुन के रखा हूँ दोस्तों, सेलेक्ट करके रखा हूँ अभिजीत का एक सॉन्ग। और अभिजीत ये प्लेबैक सिंगर से पहले ये एस डी बर्मन के साथ शो देते थे, शो पर स्टेज पर गाना गाते थे। उसके बाद ये नेखरी त्वेन तख्तक में जैसराज फिल्म ने इन्हें ले लिया गया और ये वहाँ से शुरुआत किया अपन प्लेबैक सिंगर का काम, वो भी बॉलीवुड फिल्मों में। वैसे प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक कंपोनिस्ट और ऑन द नेमर भी अभिजीत है। तो अभिजीत की आवाज़ में एक दो सॉन्ग आप सुनेंगे।

अभिजीत गुलशन कुमार और एरदे बर्मन के साथ शुरुआत किया दोस्तों, जैसे मैंने कहा तो किशोरदा का गीत गाते थे, उसके बाद अपन सिलेक्शन बॉलीवुड फिल्मों में पेश किया। एक बार फिर अभिजीत के मीठी आवाज में आप गीत सुनेंगे, अभिजीत बच्चा चाड़िया।

अब की बार दिल में हो तुम। बप्पी लहरी का म्यूजिक है और अरमान मालिक के आवाज में आप एक गीत को सुनेंगे। अरमान मालिक सॉन्ग राइटर, इंडिया से सांगर, म्यूजिकांत, प्रोड्यूसर और एक्टर। ये सिर्फ हिंदी में, लेकिन तेलुगु, एंग्लिश, बंगाल, कनाडा, मराठी, तमिल, गुजराती, पंजाबी, उर्दू और मलयालम में भी अपन गीत पेश किया है। अरमान मालिक के आवाज़ में गीत सुनेंगे आप।

अब की बार दोस्तों तू कौन है, तेरा नाम क्या है? साधना सरगम एंड मिस्टर सानू या कुमार सानू, दोनों के आवाज में आप गीत सुनेंगे। अक्षय कुमार, रेखा, रवीना टंडन, भी खिलाड़ियों के खिलाड़ी में काम किया।

मैं हूँ सीधे साधे राजन, आप सुन रहे फाहन हिंदुस्तान रेडियो राजन के साथ श्रिया घोषाल एंड पद्मश्री उदित नारायण। जमाने की सारी खुशी मिल गई है। जब जमाने की सारी खुशी मिल गया दोस्तों, तो और जमाने में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, और कुछ कमी नहीं है दुनिया में जब सारी खुशी मिल जाए तो।

में तुम मिले जिंदगी मिल गए अभी भी, किसी ने सीढ़ियों में तार किया कहा, पुराने गाने में जो मजा था अभी के गाने में कहा। 200 लोग है जो पुराने गाना से मजा लूटते हैं, और लोग जो है वो नए गाने भी चाहते हैं, तो पुराने नए गाने सब चलाना चाहिए। इसलिए मैं कभी कभी पुराने गाने चलाते हो, कभी कभी नया गाना आपके लिए पेश करता हूँ। पहली पहली बार मोहब्बत की है, आपको मालूम है वो दिन वो तारीख आपको याद है या नहीं? आपको ज़रूर याद होगा, ये पहली बार जो मोहब्बत होता है वो हमेशा दिल में जाकर समा जाता है और कभी दिल से नहीं निकलता है। ये चीज़ मैं सोचता हूँ, जैसे सभी के साथ होता है दोस्तों, पहली पहली बार मोहब्बत की है। किसी ने ये बात नहीं कह सकता है कि मैंने कभी मोहब्बत नहीं की है। मोहब्बत एक चीज़ है जो हर एक इंसान एक बार जरूर किए होंगे।

जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों की सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखूं तो करीब 2 मिनट व्यतीत हो चला है। 12:02 लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है देन हाग शहर से। जो बीमार लाचार तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनकी घर में कोई शादी विवाह कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। मुझसे पहले हमारे सहयोगी बारी बारी आपके सेवा में थे, यहाँ से मैं हूँ आपका सेवक गंगा और रहूँगा 3 बजे तक। पूर्ण आशा है कि आप हमारा साथ देंगे और कार्यक्रम सुन रहे होंगे। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस हाल में भी होंगे, कौन से देश में होंगे, बाहर देश में, मुल्क में, पता नहीं, बहरहाल आप सबको एक शुभ दिन पेश किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए। दोंदर रख 13 अगस्त है, 13 अगस्त है, दर दिन ऑफिस से आप तक पर है, जो लोग तक पर है आपका स्वागत है। मौसम भी बहुत शानदार है, जहाँ तक मेरा ख्याल करीब 24 ग्राद होगा, लेकिन मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि कितने हैं दरअसल में। बहरहाल देखने में तो अच्छा है, तो हाँ, अरे हाँ 27 हो गया। बहरहाल आप सबको एक शुभ शाम पेश है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए पहला सिलेक्शन हम आपको सुना रहे हैं, लेकर ये गीत आए हैं इस तरह से।

अब क्या मिसाल दूँ मैं तुम्हारी। और ये शानदार गीत चला फान हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

0: एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता के साथ ये शानदार गीत पेश हुआ और हमने पेश किया गुरफाओं हिंदुस्तानी रेडियो आराधना में से निकाल कर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस जी। हाँ, इस तरह से आ रहा है मुकेश जी।
1: शिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए

चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार, मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है। और ये गीत हम पेश कर रहे हैं ख़ास करके सूतरमेर के रहने वाली मीला जी के लिए भैया मंसूर के लिए, शुभकामना के साथ मीला जी या भैया मंसूर जी, ये गीत हम पेश कर रहे हैं आप दोनों के नाम। चलो सुनते हैं।

साथिया ओ बेलिया, रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया फिल्म कारवां में से निकाल कर निकली ए नसीफ 1971 का। कितने लोग कारफान बोलते हैं, कारफान ठीक है लेकिन अपने भाषा में, लेकिन हिंदी में कारवां है। कारवां में से निकाल कर निकली ए नसीफ तक का ये गीत हमने आपको सुनाया और ये गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में, विशेष करके सूत्रमेयर के रहने वाली मीला जी के लिए और जनाब मंसूर के लिए शुभकामना के साथ उन दोनों को एक शुभ दिन पेश करते हुए। घड़ी पर देखा जाए तो करीबन क्या हाल है देखूं तो 4 मिनट बाकी है, 4 मिनट बाकी 12:30 बजने में। और आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। हम एक प्लेन में एक पुरानी गाने रखे हैं, चलो सुनते हैं। बहुत दिन हुए ये गीत भी हमने नहीं सुने हैं, मिलकर सुनते हैं। फिल्म लोरी में से एक मुकेश जी का ये गीत इस तरह से आ रहा है।

मुकेश जी आपको सुनाए हैं द हार्ट ट्रब ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में ये हमने पेश की फिल्म लोरी में से निकाल कर और आपको सुनाए हैं। उम्मीद है कि शायद ये गीत आप अवश्य सुने होंगे कभी, और अगर नहीं सुने होंगे तो आज पहली बार, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं रेडियो पर चला रहा हूँ बहुत दिनों बाद, शायद 10 साल बाद चला रहे हैं, फिर से एक बार गुम हो गया था, ढूंढने पर मिल गया, तो हमने सोचा इसे अवश्य आपको सुना दूँ। चलिए कार्यक्रम पेश करते हुए इस तरह से आ रहा है ये शानदार।

माइति मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ ये गीत हम आपको सुनाए हैं। फिल्म फर्ज में से निकाल कर हमने पेश की लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। फाउन हिंदुस्तानी पर आप चून हैं, जो लोग चून किए हैं आपका स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम एक सुरेश वादिकर जी के गीत आपको सुनाते हैं। चलो सुरेश वादिकर की आवाज़ में ये गीत।

सुरेश वाडेकर आपको सुनाए ये शानदार गीत निगाहें यार ने कि एक ऐसा जादू भर दिया, और ये गीत हमने पेश की आज के कार्यक्रम में। तो चलो अगला गीत, हाँ अगला गीत हम पेश कर रहे हैं। जी हाँ, देखते हैं ये प्यारा गीत भी जहाँ तक मेरा ख्याल है फर्श से निकाल रहे हैं, तो इस तरह से हम इसे चला रहे हैं। और ये गीत चलाने ये गीत हम पेश कर रहे हैं, देखते हैं अल्फा ऑन द रेन, अल्फा ऑन द रेन के रहने वाले श्रीमान चांद रघुनाथ के लिए और उनकी धर्मपत्नी खिसला की है। भैया चांद रघुनाथ और खिसला के लिए शुभकामना के साथ चलिए ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

ये था ये शानदार गीत हमने पेश की ओफर फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। और ये गीत हमने पेश की, देखते हैं आलफरान दरेन के रहने वाले श्रीमान चांद रघुनाथ तो खिसला के लिए शुभकामना।

मना के साथ एक शुभ दिन पेश करते हुए आप चुन हैं फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर। चलिए एक और गीत हमने रखे हैं, तो क्या ख्याल है? जी हाँ, तो क्या ख्याल अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है।

0: शिकार करने का आए शिकार हो के चले, ये गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए यहाँ से हम पेश करते हैं विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़ और न्यूज़ के बाद बस मैं वापस आ रहा हूँ। बस मैं यूँ गया और यूँ आया।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: www.fahonfm.nl पर आप चुन हैं, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। दोंदरदाख दर्दी नौखिस का कार्यक्रम है, आप तत्पर हैं, जो लोग चुन किए हैं हृदय से स्वागत किया जा रहा है आपका। तो लीजिए, अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, और क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से। माइती मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस।

लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ अ मिलियंस दोनों मिलके आपको सुनाई है ये प्यारा गीत हमने पेश की। चलिए एक गीत हमने प्लेयर में रखे हैं और ये भी लता जी के फिल्म है आओ प्यार करें। जी हाँ, तो चलो सुनते हैं आओ प्यार करें में। और तो गाना तो है लेकिन कौन सा गाना मैं चलाने वाला हूँ लता जी की, ये सुनिए।

Zo, gaan ze pata chalta, ze is toch wat van plan. लता जी की आवाज में ये शानदार गीत हम आपको सुनाएं। योजना तो बहुत बनाया मौसम के देखकर। बहरहाल फौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने ये गीत पेश की, तो अगर ये गीत पेश की तो चलो हम आपको सुनाते हैं ये गीत उसके बाद।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर ये गीत पेश हुआ, लता जी की आवाज़ में, फिल्म आन मिलो सजना में से हमने निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। अगला गीत हमने प्लेयर में एक रखे हैं, इसकी थोड़ी बयाना बता देते हैं। ये गीत गाया गया है सी रामचंद्रा, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्हीं के साज पर, लता जी के साथ फिल्म अलबेला में। तो बात ऐसे है कि अब कौन रात्रि के 12 बजे रात्रि को यहाँ स्टूडियो आएगा और बैठकर आपको ये गीत सुनाएगा, मेरे बस के तो बात नहीं है। शायद कभी साल में एक बार हो जाए कि 12 बजे रात्रि को मैं यहाँ आऊँ, स्टूडियो में बैठूँ और आपको पहले बताऊँ कि गंगा ये गीत चलाने वाला है, ये नहीं करेंगे। चलिए ये गीत हम अभी आपको सुना देते हैं, क्योंकि 12 बजे रात्रि का कौन इंतज़ार करेगा। चलो हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, 12 बजे रात्रि को जलाना चलाना था, हम आपको अभी सुना देते हैं इस तरह से।

श्री रामचंद्रा के साथ परचितल का रामचंद्र खुद और लता जी के साथ ये द्वैत हम आपको सुनाए हैं फिल्म अलबेलाल में से निकाल कर। अब ये तो ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि 12 बजे रात्रि को कोई हमारे को लिखा या मैं आकर ये गीत आपको सुनाऊं तो लगे हाथ हमने अभी आपको सुना दी। यूँ समझिए कि 12 बजे रात्रि है, आपने आँख मूंद ली है, रात हो गया। बहरहाल फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने जो चुन घी हैं, इस मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

दिल में प्रेम प्यार मोहब्बत के जगह मिले, वह क्या बात है। रफ़ी साहब की आवाज़ में और लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। चलिए ये गीत हमने प्लेयर में और रखे हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से आ रहा है। नाग पंचमी में से नेगेटिव तुम से ही।

वाह क्या बात है, यह शानदार गीत पेश हुआ हमने चलाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं ये गीत। जी हाँ चलो ये गीत सुनते हैं, इस तरह से आ रहा है।

नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है, लता जी की आवाज़ में। और माई तू मुकेश आपको सुनाए फिल्म कोबरा ग्यूल में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है उतरेख्त। उतरेख्त के रहने वाली बिया जी। उतरेख्त के रहने वाले बिया जी अपने काम धाम कर रही है लेकिन साथ ही साथ कार्यक्रम सुन रही है। बिया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिया जी आपके लिए ये गीत हम पेश कर रहे हैं इस तरह से, उतरेख्त के रहने वाली बिया जी के लिए।

अच्छा चलो सो जाते हैं, लेकिन ये मौसम तो सोने का नहीं है। बहरहाल गाना में सब चलता है। ये शानदार गीत हम आपको सुनाएं फिल्म चरस में से निकाल कर, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर, लता जी और किशोर कुमार जी का आवाज़ में। चलो अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है ये। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, और ये गीत इस तरह से आ रहा है। और ये गीत हम पेश कर रहे हैं फ्लिसिंगन के रहने वाले श्रीमती आनी सरजू मिसिर और ज्योति सरजू मिसिर के नाम पर, दोनों के लिए फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, आनी की तरफ से ज्योतिष के लिए, ज्योतिष की तरफ से आनी के लिए सरजू मिसिर परिवार शुभकामना के साथ ये गीत हम पेश कर रहे हैं फ्लिसिंगन के रहने वाले सरजू मिसिर जी के लिए।

नज़र बचा कर चले गए वो। ये शानदार गीत चला देखते हैं, फ्लिसिंगन से ईलान के रहने वाले हैं श्रीमती आनी सरजुमिसिर और ज्योति सरजुमिसिर के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ दिन पेश करते हुए आनी जी को और ज्योति जी को बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार फ्लिसिंगन से है, सेलान से, दूर दराज से भी कार्यक्रम सुन रहे हैं आप दोनों के फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, तो चलो ये हम आपको सुनाते हैं। इस तरह से आ रहा है

सपना तुम ही तो हो जिसका सपना मैंने देखा था। ये शानदार गीत चला ओवरफाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो अगर आप भी हैं, मैं भी हूँ, मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ।

महेंद्र कपूर जी और लता जी, ये दोनों मिल के बड़ा आदमी से में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाएं। और साज है चित्रगुप्त जी का, चित्रगुप्त के साज पर ये गीत पेश हुआ। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, आप भी हैं और मैं भी, जैसे मैंने कहा। तो क्या ख्याल है कि हम आपको ये धमाकेदार गीत सुनाएं।

नथनिया हाले तो बड़ा मज़ा होए, ये चटपटा चुटकुला गीत हम आपको सुनाए हैं फौन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, ये देखते हैं, ये लॉफिन टोक्यो का है। जी हाँ, लॉफिन टोक्यो इस तरह से है।

फिल्म लॉफिंग टोक्यो में से निकाल कर ये प्यारा गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए ये गीत भी आपको सुना देता हूँ। एवरग्रीन किशोर कुमार। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर।

जाने मन जाने मन एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाएं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर हमने पेश की। आप भी हैं और मैं भी हूँ। अच्छा, तो अगर आप दोनों हम दोनों हैं आप श्रोताओं, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊँ। ये गीत के बोल थोड़ा, इसे सुनिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सुन लीजिए।

फिल्म गैम्बलर में से निकाले हैं निकित एन से इवन तक का, ये देवानंद का गैम्बलर है, ग्रेट गैम्बलर नहीं, गैम्बलर निकित एन से इवन तक का ये गीत लता जी की आवाज़ में और एफ एन ग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, जी हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर आनंद राज आनंद।

म्यूजिक डायरेक्टर आनंद राज आनंद खुद अपने ही आवाज़ में उन्होंने सुनाए हैं। ये प्यारा गीत हमने पेश किया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। और क्या ख्याल है ये लवली सॉन्ग इस तरह से

खुदा भी आसमां से शंकर जय किशन के साज पर ये गीत पेश हुआ ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुना रहा है फिल्म महिला आंचल। जी हाँ, शायद ये फिल्म आप पहली बार सुने होंगे या सुन रहे हैं, फिल्म महिला आंचल में से।

नरगिस मस्ताना बस इतनी शिकायत है। ये गीत हमने पेश की। घड़ी पर देखा जाओ तो धीरे धीरे आपसे विदाई लेने के समय आ रहा है। तो लीजिए ये गीत मैं आपको सुनाता हूँ। ये गीत हमने भी नहीं सुने, फिर मनोरंजन में से निकाल रहे हैं आशा जी और किशोर कुमार जी, ये दोनों मिलके। चलो आप भी सुनिए, मैं भी सुनता हूँ। ये गीत पता नहीं हमने कभी सुने हैं या नहीं, लेकिन सुनते हैं।

तेरा हाथ थाम के आया हूँ, ले जाऊँगा बहरहाल एवरग्रीन। किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे हैं, और यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश की। इस उम्मीद के साथ आप सबको पसंद आया होगा। और साथ ही साथ कार्यक्रम में भाग लिए थे मीला जी और भैया मंसूर जी, सूत्रमेर के रहने वाले, और श्रीमान चांद्र घुनाथ और खिसला जी, और आनी सरजू मिसिर और ज्योति सरजू मिसिर जी, फिलसंगे के रहने वाले, और इतरक के रहने वाले बेया जी। आप सभी को मैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और जो लोग तार किए हैं और ऐप किए हैं, कार्यक्रम में अपना नाम नहीं लेवाना चाहते, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत इतनी बहुत अच्छा लगा। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं को। मेरे बाद आप सुनेंगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद बाकी के कार्यक्रम हमारे सहयोगी मिलकर आपकी सेवा करेंगे। मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला सोंदाख, आने वाला सोंदाख गीत गज़ल के कार्यक्रम में भैया यूसुफ के साथ, रात 8 से 10 बजे तक। जी हाँ, 8 से 10 बजे तक गीत गज़ल के कार्यक्रम में हम आ रहे हैं वापस फिर भैया यूसुफ के साथ। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जहाँ भी आप होंगे, जो भी कर रहे होंगे, कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है। रात होगा तो शुभ रात्रि, सुबह होगी तो शुभ प्रातः। और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे मिल रहा हूँ सोमवार को, जैसे मैंने कहा। आप सबको एक शुभ शाम।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: और आपको बता देती है दोस्तों, हम रेडियो फाहुन के माध्यम से इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं। हमारे पता है न्यू टोंस्ट्रात न्यूमरो 25 और दनहाक शेहम। इस वक्त आपको इस प्रोग्राम को सुनाते हैं। दोस्तों, अगर आप रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुनते हैं तो कई तरह के इस पे आपको मोख लिखाए थे, यानी कि देहाबी प्लस रेडियो के जरिए, यानी कि एथर पे भी आप सुन सकते अपने गाड़ी में 15.66 AM पर, और नहीं तो आप हमारा वेबसाइट पे जाइए और पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुन सकते हैं www.fm.nl।

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

बसी हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों, और ये है लता जी इसका गाना, इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं, और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं, आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात जो नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहां पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म जो इसमें काम किए हैं वो शमी कपूर आशा परेख ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे। मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिलके सुना जाए कि जोनी कौन गाना द्राई करे कि हमें भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: तुमने मुझसे यही सवाल किया था
2: क्या?
1: क्या मैं तुम्हें भूल जाऊं तो?
2: तुमने क्या जवाब दिया?

और जो तुम मुझे भुला ना पाओगे जब तुम मुझको देखोगे तो कैसे आप आएंगे। ये बात मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों, अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुरानी गाने से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

उस देश के वासी हम हैं, और वो देश कौन है दोस्तों, जहाँ पे मुकेश रहते थे, और वो है गंगा जहाँ पे बहते हैं, और हम उस देश के वासी है दोस्तों, सूरीनाम के देश के वासी तो हम सब है। और मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाए हैं दोस्तों, जो अगर जो आप मुकेश के सुन चुके होंगे तो हम चलते हैं रफ़ी जी के, रफ़ी जी के गाना भी सुनना चाहिए, और वो है इशारों इशारों में क्या होता है, इशारों इशारों में तो कभी दिल चला जाता है, नहीं दिल दिल को चुरा लेता है, दोनों होता है ना, तो आओ मिलके सुना जाए मोहम्मद रफी जी की आवाज।

इशारों इशारों में दिल देने वाले परमान श्री मोहम्मद रफी की आवाज में इस गाना के आपने सुना है और आशा भोसले की आवाज में दोस्तों। और अगर रफी जी जब पिक सुनाया है तो हम तुरंत जाते करोड़ों दिल को चुराने वाले और वो है मुकेश। फिल्म का नाम है श्री 420 नेकंती होंदित 515 तक का ये फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस ने काम किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए।

और फिल्म श्री 420 का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग को सुना दिए है। नई खतीर 55 का फिल्म राजकुमार और नरगिस का इस गाने में गाया है मुकेश जी और लता जी। दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगला गाना की ओर, वो है परमाशी मोहम्मद रफी का ये गाना है और इसमें काम किया है शायरा बानो राजेंद्र कुमार। फिल्म का नाम है अरमान, फिल्म के नाम है अरमान और ये गाना क्या है धोरो मस्त भरी पुरानी गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। मिशिक है शंकर जय किशन का और इस गाना को लिखा है हसर जयपुर का ये गाना है और आओ मिलकर सुना जाए।

0: गाना।
1: तुम्हारी हर बांस पे है मुझे बहुत नाज दोस्तों, शेरा बानू राजेंद्र कुमार ने फिल्म अरमान में काम किया है और परमाशी मोहम्मद रफी जी के गाना है हसर जयपुर के साथ में। और हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर हमारे दोस्तों, और ये फिल्म का नाम है और देवानंद उषा किरण फिल्म का नाम है पतिता का। ये फिल्म है दादा हेमंत कुमार और दीदी लजा जी के आवाज़ में। इस गाना को आओ सुनिए।

दादा हेमंत जी के आवाज में आप लोगों इस गाना को सुना है और एक मस्त भरी रोमांटिक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। इसमें काम किया है देवानंद जी और उषा किरण ने। फिल्म का नाम है पतिता दोस्तों। और उसके बाद हम चलते हैं और एक गाना के ओर और वो भी है फिल्म के नाम है, ये भी एक बहुत पुराना फिल्म है अलबेला का ये गाना है। हमारे दोस्तों लता जी इस फिल्म में इस गाना को गाया है और इसमें भगवान ने बहुत कमाल किया है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए ये गाना क्या है भाई, बहुत पुराना गाना है ये, और सुना जाए।

भोली सूरत दिल के खोटे और नाम बहुत बड़ा है कितरूर कितरी को, लेकिन कर्म बहुत छोटे है दोस्तों। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े हैं बाकी दिल से बहुत खोटे हैं हमारे दोस्तों। और हमारे दोस्तों, और ये गाना को जिसके सपने में हम रोज आते हैं, और महेंद्र कुमार और लता जी बताए गए हैं, नई खंती सीफन तक का ये गाना है, आओ मिल के सुना जाए।

जिसके सपने हमें रोज आते रहे और गुना गुनगुनाते रहे, वो कहते कि क्या तू ही रह ले भैया। और जो गाना अब हम आप लोग को सुनाएंगे ये है गोरी तेरी नैनों में हम बस गए हैं, हम बस गए हैं। गोविंदा करिश्मा का ये फिल्म है और ये गाना को गाया है हमारा कुमार शानू। कुमार शानू

मोहब्बत और मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ा काम का चीज है और कभी कभी मोहब्बत में बहुत बहुत गलतियां हो जाती है दोस्तों। और गलतियां तो हमारे लोग का भी एक हिस्सा है हमारे दोस्तों। तो आज हम आप लोग को कुछ प्यार भरी शायरी सुनाएंगे, कुछ गाना हम सुनाएंगे एक घंटे के लिए, और उसके बाद तो हमारा प्रोग्राम को और आगे को हम बढ़ाएंगे। कहते हैं तेरे ख्याल में जब बेख्याल होता हूँ, तेरे ख्याल में मैं जब बेख्याल होता हूँ, जरा सा देर को ही सही बेमिसाल होता हूँ। थोड़ा से देर होइगे बाकी फिर भी बेमिसाल होता हूँ। तो हम चलते हैं दोस्तों। मुझे नींद न आए, आपको आते हैं? आपको क्या आते हैं? अभी क्या आएंगे दोस्तों, लेकिन आएंगे जरूर। हम चलते हैं एक पुराना नंबर की ओर।

और मुझे नींद न आए, और मुझे नींद न आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का ये फिल्म दिल मूवी का नाम है दोस्तों। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने ये गाना को गाया है। और हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, और यहाँ से हम अपना प्रोग्राम को और आगे को चलाएंगे और सुनाएंगे, और कोई शायरी एक दो बीच बीच में हम कर देंगे। और हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हम चलते हैं और ये दर्द के बात है। और दर्द में क्या होता है दोस्तों, दर्द में आंस गिर जाता है, दिल रोए पड़ता है, दिल धड़क जाता है। और जब दिल धड़क जाता है तो क्या होता है, आप खुद ही सुनिए।

क्या हुआ जो तूने छू लिया, और जो अगर छू लिया तो उसके आगे आपको क्या होता है दोस्तों, ये मैं क्या करूं, आप तो खुद ही जानते हैं। और कहते हैं होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, साहिल पर समंदर की खजाना नहीं आती। और आगे को हम चलते हैं दोस्तों कि कहते हैं इश्क मोहब्बत दीवानी ये बस लफ्ज ही थे, जब तुम मिला तब इन लफ्जों को मैंने मिले। और दोस्तों ऐसे ऐसे कुछ शेरे आज आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे, और हमें यही आशा है कि आपको जरूर अच्छा लगेंगे। कहते हैं कि कहते हैं फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवान होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फहसाना तो निगाहों से बयान होता है। यस मींस रोकेर, फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में तो प्यार जवान होता है। दिल के बातों का होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयान होता है दोस्तों। और इस बयान में हम आप लोग के चलते हैं सुबह से लेकर क्या होता है, खाना तो नहीं होता है दोस्तों, और कुछ होता है, वो क्या होता है आप सुनिए।

चाहते हैं सिर्फ प्यार करो दोस्तों, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे लेकर चलते हैं। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों कि कहते हैं, प्यार करने वालों कहते हैं कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, खुद तो करके वो एक दिन मुझसे प्यार करेंगे, प्यार की आग में हम उसे उसको इतना जलाएंगे कि सारी दिन हमसे प्यार ही करते रहेंगे। यस मेंस, आज हम प्यार के मूड में हैं, इसीलिए प्यार के कुछ शायरी हो जाए। और कहते हैं कि एक पल मैं जो आकर गुजर जाऊं, एक पल में जाकर गुजर जाए, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं, प्यार कहते हैं दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं दोस्तों। तो ये सब बात शायरी में लोग लिख के धर दिया है, और आज अपनी जिंदगी के कुछ बातें हम आप लोग को सुनाएंगे, और वो क्या है दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

मेरे जिंदगी में, और मेरे जिंदगी में जब आप आए हो तो बहार बन के आए हो। और फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गाना है दोस्तों, जो आपके हमने सुनाया है। और हम चलते हैं और आगे को दोस्तों। मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है, आप तो जानते हैं, जलो कभी मस्त हो जाते हैं तो वो जगह नहीं छोड़ता है। जगर उसको कुछ सोचना है तो जाकर वहाँ पर बैठ जाता है, और बैठ के, और जैसे दोस्तों जब हम कुछ लिखते हैं तो मुझे वो स्पेशल जगह होता है जहाँ पर हम बैठ के कुछ लिखते हैं। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जब जो प्यार के मूड में होता है तो वही जगह वो खोजता है, और कहते हैं मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है जहां बैठकर एक बार तुम्हें सोच लेता हूं। जी हां दोस्तों, और कहते हैं इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, कोई हंसता है दोस्तों तो कोई रोता है, पर सबसे सुखी वो होता है जो शाम को दुई बोरल मार के सोता है। एक शायर हो गए भैया, ये हंसते हुए सिर्फ प्यार भरे नहीं, लेकिन हंसते हुए नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं। नजरे करम मुझे पर इतना न कर, मुझे पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं। मुझे इतना न पिला इश्क के जाम कि मैं इश्क के जहर में आधी हो जाऊं। दोस्तों हम चलते हैं कि अगर आपके दिल ने किसी चुरा लिया है तो ये गाना आपको जरूर सुनना चाहिए।

बसी चुरा लिया है, और चुरा लिया है क्या भैया, दिल के बात होता है, दिल के बात होता है हमारे प्यारे प्यारे और सुनने वालों। और दिल बेस्टमैन से हम चलते हैं एक रीमिक्स गाना की ओर, यानी कि रीमिक्स भी बजाना चाहिए और तुम दिल के धड़कनों में रहते हो, उस गाना की ओर जाते हैं हम दोस्तों। अभी हम वापस आ जाएंगे।

बस तुम दिल की धड़कन में और रहते हो रहते हैं। अलका का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी ने इस फिल्म में काम किया है हमारे दोस्तों। और हमारे प्यारे दोस्तों ये गाना है जब बारिश आता है तो ये गाना सुनने में और अच्छा लगता है। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों फिल्म का नाम है सूर्यवंशी, अक्षय कुमार कैटरीना कैफ के, और इस गाना में इस फिल्म में यानी गाना को गाया है उदित और अलका ने। आओ मिलकर सुना जाए तो अभी हम वापस आ जाएंगे।

रो दोस्तों, टिप टिप करता और क्या करता है टिप टिप भैया, बारिश होता है टिप टिप, और जब बारिश होता है तो क्या करना चाहिए दोस्तों, आपके तो खुद मालूम होगा। हम चलते हैं और आगे को, और बचना ऐ हसीनों, बचना किससे है दोस्तों, उससे बचना है जो दिल के लुटेरा होता है, उससे बचना।

कर दे थोड़ा प्यार और थोड़ा प्यार ना करियो तो दोनों मर जाएंगे। ये काम ना करना भैया, ना करना, मरने वाला बात क्यों करते हैं, जीने वाला काम करो। जैसे किताबों बहुत है शाहरुख खान और शिल्पा कहते हैं, आओ सुना जाए क्या कहते हैं।

किताबों में बहुत से चीज लिखा है दोस्तों, लेकिन सिर्फ किताबों में वही नहीं लिखा है। हाँ, आजकल इंटरनेट पे लोग पढ़ते हैं तो, और उस पे नहीं मिलेगा तो टिकटॉक पे आपको मिल जाएंगे, कारण कि हमारा सोशल मीडिया जो है आज आसमान छू लिया दोस्तों। जवान से बच्चे से लेकर और बूढ़े लोग 24 घंटा हुई टेलीफोन में और फिर सोशल मीडिया पे सब रक्त रहते हैं, और तो कोई टिकटॉक बनाते हैं, तो कोई फेसबुक बनाते हैं, तो कोई इंस्टाग्राम पे जाते, तो कोई फोटोशॉप करते हैं, तो कोई क्या क्या करते भैया। लेकिन सब उस सभी को देखो तो अपना आँख जो है अपने टेलीफोन में लगाए रहते हैं, तो कहते हैं कभी कभी दिल भी किसी चुरा लेता है, और जब दिल चुरा लेता है तो आपको क्या करना चाहिए। हम यहाँ से बताते हैं कि अगर आपके दिल गुम हो गया तो आपको कैसे मालूम होगा कि कैसे गुम हो गया है, और यहां से

जो दिल को लेकिन नजर नहीं चुराना मेरे सनम। तो ये गीत आप लोग को एक ओल्ड सॉन्ग हमने सुना दिया है और हम अपना यानी अगला गीत की ओर जाते हैं। और कभी कभी लोग भूल जाते हैं सपने साजन की में अलका याग्निक और मुकुल अग्रवाल कहते हैं कि कभी कभी भूल जाते हैं लोग। और क्या भूल जाते हैं दोस्तों? यादें भूल जाते हैं।

और मैं भी कभी भूला है और कभी याद करते हैं हमारी जनता, हमारे लिस्टनर्स, हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, और याद तो करना चाहिए कारण की रेडियो फाउन के माध्यम से इस प्रोग्राम को चलती ही जो हमारा प्रोग्राम दे आप बी प्लस रेडियो पे आप सुन सकते हैं कनाल 5B पे फ्रिक्वेंसी होन दिन तक 6.40 मेगा हर्ट्ज पर, और नहीं कनाल 8 पे भी आप लोग सुन सकते हैं हमारा प्रोग्राम जो 24 घंटा चलते हैं। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर जो यहाँ के ही कांतोर का है, अमिस्त्रासी का है, 07-3625-2240, और नहीं हमारा स्टूडियो नंबर है 07-3625-2207 पर आप लोग हर जानकारी के लिए तार कर सकते हैं। और हम चलते हैं शैलेंद्र सिंह और कंचन की ओर। फिल्म के नाम है रफू चक्कड़ की ओर हम आओ मिलकर इस गीत को सुना जाए।

किसी से प्यार करते हैं तो अपना आवास उसके साथ, उसके आवास में मिलाना चाहिए हमारे दोस्तों। और जब आवास मिल गया तो उसको भुलाना भी नहीं चाहिए। ये कहते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अन्नू अग्रवाल, ये कहते हैं।

और आपको हमारा यहाँ से ही है कहते हैं कि दुनिया कभी नहीं भुलाना, कभी कभी चाहत में धोखा हो जाते हैं तो वो दुनिया ही आपके काम आते हैं। हम कल चाहते हैं कि आम की कागज कोरा होगा तो उसका नाम इस पर आपको लिखना चाहिए।

और हमारा दिल भी कोरा कागज का है, और अगर आपको भी होगा तो किसी के नाम उस पे जरूर लिख देना। उसके बाद हम जाते हैं, जो कोई ओढ़नी ओढ़ता तो बोले हमार नानी आजी ओढ़े, लेकिन यहाँ ओढ़नी कुछ और बातचीत हो है जो अलका याग्निक का उदित नारायण आपको सुनाते हैं। हमारी यारो

और ओढ़नी ओढ़ के नचियो तो और मोई लगेगा नानी, यही बतिया हमारा जी नानी बोले है। और हम जाते हैं गीत के ओर, हवाओं ने कहा और क्या क्या ने कहा, आओ मिलकर सुना जाए।

0: और चलो दिल में बसा के उससे भी प्यार किया जाए। ये मस्त भरी
1: लाइव रेड इन हाग वाहो हिंदुस्तानी रेडियो।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: आप चुने फोन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुनाते हैं ये नंबर।

टाइटल सॉन्ग रफ़ी साहब की हम आपको सुनाए हैं और शंकर जय किशन के साज पर फिल्म प्यार ही प्यार में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये गीत आप सुनिए बस इस तरह से आ रहा है श्याम जी। हाँ ये गीत।

मैं थी मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने निकाले हैं नेघिनती नेघिन शस्त्र से 1969 से ये गीत। चलिए प्रोग्राम में हम पेश करते हैं क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं। जी हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार फिल्म धर्मात्मा में से नेघिनती फेफ से इफ तक का ये गीत 1975 का ये गीत क्या ख्याल है। हाँ

एवरग्रीन किशोर कुमार, आपको सुना है ये शानदार गीत नेकिती फैगन से ही मित्र 1975 का ये गीत फिल्म धर्मात्मा में से हमने निकाले हैं। चलिए आप भी हैं और मैं भी हूँ, मैं चला रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सबका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से।

जी हाँ, तुम बिन रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनाया गया ये शानदार गीत काफ़ी प्रचलित था, अब भी है और शायद ऐसा रहेगा भी, यानी बहुत पॉपुलर था, है और पॉपुलर रहेगा। ये शानदार गीत हमने पेश की। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं राहत फ़तेह अली खान। जी हाँ, राहत फ़तेह अली खान आपको क्या सुना रहा है।

0: राहत फतेह अली खान जी और सुशांत जी मिलके फिल्म दे दना दन में से हमने निकाल कर आपको सुनाई है। चलिए विज्ञापन से पहले हम आपको ये गीत सुनाते हैं, क्या ख्याल है अगर जे ये हम आपको सुनाएंगे।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: वाह क्या बात है, लता जी की आवाज़ में आपने सुने ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कर www.faunfm.nl पर आप चुने, जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है और कार्यक्रम आप सुन रहे जहाँ भी होंगे जो भी कर रहे होंगे एक बार फिर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा आपको हृदय से स्वागत किया जा रहा है.
1: Geschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden.

मधुमन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। फिल्म साजन बिन सुहागन नीतिन अख्तर सैफ इंतक येसुदास उषा खन्ना के साज पर हम आपको ये गीत सुनाए हैं। आप चुने फान हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आप कार्यक्रम नज़दीक से बैठ कर सुन रहे हैं जहाँ तक मेरा ख्याल पता चला है, तो हम आपको ये सुनाते हैं इस तरह से।

आतिफ असलम आपको सुनाएं। ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, हमने ये गीत रखे हैं, क्या ख्याल है? आ रही है सलमा आगा जी। जी हाँ, सलमा आगा जी।

0: सलमा आपको सुनाए ये शानदार गीत और हमने पेश की कार्यक्रम में, आपको अवश्य अच्छा लगा होगा ये गीत। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है, चलो सुनते हैं ये गीत। हाँ
1: संग रहने की।
0: अच्छा
1: आए।

लता जी आपको सुनाए हंस परदेसी और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग ऐप करते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। जैसे अल्फनांदेरन के रहने वाला श्रीमान

ढोल सजना ढोल जानी रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं ये कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है? चलो सुनते हैं कि राहत फ़तेह अली खान जी, जी हाँ, अपने झड़कने वाले जिया के बारे में क्या कह रहा है। चलो सुनते हैं, बहुत दिन हुए हम भी नहीं सुने कि धड़कते हुए दिल कैसा होता है। राहत फ़तेह अली खान जी।

जिया धड़क धड़क जाए। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। क्या देखते हैं शारदा जी, राहत फतेह अली खान के धड़कने वाला दिल को राहत दे सकती है। चलो सुनते हैं।

लेकिन हम कुछ आपको शायर के गीत को सुनाते हैं। और शायर के बाद हम क्या सुनाएंगे, हम चलते हैं, ये दुआ है मेरा रब से दुआ है दोस्तों, और जब रब से दुआ करेंगे तो आपको जरूर रब आपका दुआ जो है वो कबूल जरूर करेगी। तो फिल्म के नाम है सपना साजन की, अलका की और कुमार शानू का ये सॉन्ग है।

पसंद आए हमारे दोस्तों। तो बात क्या है, कैसे है, आपको हम जरूर सुनाएंगे। तो हमारे दोस्तों आज प्यार के मूड में फिर आ गए हैं और प्यार के मूड में आए हैं, तो प्यार तो करना चाहिए। तो हम चलते हैं बाला सुब्रमण्यम की ओर। ये भी बहुत लवली गीत गाया है दोस्तों, आओ एक और सुना जाए। और वो है बाला सुब्रमण्यम के आवाज में।

बाबुल सुब्रमण्यन के बाद तो हम चलते हैं और एक गीत के ओर, वो भी आज प्यार के मूड में है। कुमार शानू के ये गीत है, आओ प्यार करे, आप भी प्यार करो ना।

0: और चांद से पर्दा कीजिए कोई चुरा न ले और चेहरे के नूर हमारे ये। तो एक और हो जाए बाला सुब्रमण्यम का ओल्ड सॉन्ग
1: बहुत प्यार
0: और मैं भी
1: तुमको
0: बहुत प्यार करते हैं हम
1: बहुत

और बहुत प्यार तो करते हैं और सदा करते ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। बहुत प्यार करेंगे और करते ही रहेंगे जब लेक सांसों में दम रहेगा। दोस्तों तो हम अगला गीत की ओर जाते हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत तो नहीं है। अलका याग्निक सोनू निगम का ये सॉन्ग है।

और कहते हैं अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है और इसलिए कि तुम मेरी बाहों में हो, तो आप कितनी महान हैं कि सांस लेने की भी हमें फुर्सत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी यादों में नहीं मेरी बाहों में हो। दोस्तों हम चलते हैं नाइटिंगेल और लता मंगेशकर और परमा श्री मोहम्मद रफी के एक मस्त भरी प्यार भरी गीत अतिश वेलन हील अवलीची फन 1957 और फिल्म के नाम बा भाभी। और ये गीत हम चलाते हैं, आप लोग सुनो।

छुपा कर मेरी आंखों को तो पूछे कौन है और बता दीजिए नाना जी लता जी और प्रणाम श्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ सॉन्ग है। और हम चलते हैं कभी कभी जब प्यार हो जाता है तो लोग खोजते हैं, क्या खोजते हैं, लोग खोजते हैं कि हम कहाँ अपना प्यार को ढूंढू और प्यार में लोग क्या क्या देखते हैं। और ये गीत है रब को भी लोग देख देते हैं प्यार भी हमारे यारों।

और दोस्तों हम चलते हैं एक ओल्ड इन गोल का पुराना गीत है, वो है फिल्म का नाम है मेरे ख्याल से ये है, ये कुछ और फिल्म का नाम है, तुम अकेले तो कभी बाग में मत जाया कर आओ प्यार करे, मूवी का नाम है आओ प्यार करे, ये रजत खन्ना का ये एक फिल्म है और ये गीत आओ सुना जाए मिलकर।

और मूवी का नाम है साजन और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

करने को ये सॉन्ग दे और हम चलते ही दोस्तों, आप लोग जानते ही यार नहीं घंटक का सोन और वो कुछ और थे और ओल्ड इन गोल्ड और कुछ है दोस्तों, और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है, लेकिन हम चलते हैं यार नहीं घंटक का जोन और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे। मोफिक राम है साजन।

भी प्यार करते हैं, तुझको जन्म तार आया है लेवाड़े से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और है माइती मुकेश का ये सॉन्ग है।

और ये बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आप सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको हम सुनाएंगे। मुकेश एवरग्रीन्स मेलोडी सॉन्ग है, ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे। और गीत है इस फिल्म में दोस्तों, लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

अभी अपना दिल उसी को दीजिए जिस तुम्हारे दिल के काबिल है। तो काबिल के बांज करते हैं तो हम चलते हैं, मौफी के नाम है भरोसा, निकट होंद द्रियन सस्तक का ये फिल्म है और गुरुदत्त और आशा परेख ने इस मूवी में सुपरहिट फॉलो फिल्म है जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए दोस्तों।

0: Zetten.
1: Zo, die kan wel een cool best brood.
2: Yes, doostu. To ye kuche. बीच बीच में कभी कभी अच्छे अच्छे गीत सुनाने के मूड में हम हो जाते हैं, और जब गीत सुनाते हैं तो कभी कभी दिल भी रो देते हैं हमारे दोस्तों।

तारीफ करते है गुरुदत्त और आशा पारेख ने। भरोसा मोफी के नाम है निकट द्री एंसेस्टर का बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर है।

0: इस मूवी में और फिल्म के नाम है अंदाज 1949 का ये सॉन्ग है जिसमें दिलीप कुमार ने काम किए हैं और राजेंद्र कुमार ने काम किए है नौजात के साथ में
1: टूटे ना दिल टूटे ना।
0: हम चलते हैं एक और सॉन्ग आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं हावड़ा ब्रिज

मूवी के नाम थी हावड़ा ब्रिज। एक और अगला सॉन्ग किम जेते दूर कोई गाए धुनिए।

0: और दूर कोई गाए धुनिए सुनाए और मेरे मन और क्या क्या है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल्ड का ये सॉन्ग है।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: और आपको बता देती है दोस्तों, हम रेडियो फाहुन के माध्यम से इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं। हमारे पता है न्यू टाउन स्ट्रैट नंबरो 25 और दरहाक शेहम। इस वक्त आपको इस प्रोग्राम को सुनाते हैं दोस्तों। अगर आप रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुनते हैं तो कई तरह के इस पे आपको मोख लिखाए थे, यानी कि देहाबी प्लस रेडियो के जरिए, यानी कि एटर पे भी आप सुन सकते अपने गाड़ी में 15.66 AM पर, और नहीं तो आप हमारा वेबसाइट पे जाइए और पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में हमारा रेडियो फाहुन प्रोग्राम सुन सकते हैं www.fm.nl।

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

बसी हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों, और ये है लता जी इसका गाना, इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं, और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं, आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात जो नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहाँ पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म जो इसमें काम किए हैं वो शमी कपूर आशा परेख ने है। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे, मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिल के सुना जाए कि जॉनी कौन गाना दराई करे कि हमें भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: तुमने मुझसे यही सवाल किया था।
2: क्या
1: क्या मैं तुम्हें भूल जाऊं तो
2: तुमने क्या जवाब दिया?

और जो तुम मुझे भुला ना पाओगे जब तुम मुझको देखोगे तो कैसे आप आएंगे। ये बात मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों, अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुरानी गाना से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

उस देश के वासी हम हैं, और वो देश कौन है दोस्तों, जहाँ पे मुकेश रहते थे, और वो है गंगा जहाँ पर बहते हैं, और हम उर देश के वासी है दोस्तों, सूरीनाम के देश के वासी तो हम सब है, और मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाए हैं दोस्तों। जो अगर जो आप मुकेश की सुन चुके होंगे तो हम चलते हैं रफ़ी जी के, रफ़ी जी के गाना भी सुनना चाहिए, और वो है इशारों इशारों में क्या होता है, इशारों इशारों में तो कभी दिल चला जाता है, नहीं दिल दिल को चुरा लेता है, दोनों होता है ना। तो आओ मिलके सुना जाए मोहम्मद रफी जी की आवाज।

इशारों इशारों में दिल देने वाले परमान श्री मोहम्मद रफी की आवाज में इस गाना के आपने सुना है और आशा भोसले की आवाज में दोस्तों। और अगर रफी जी जब पिक सुनाया है तो हम तुरंत जाते करोड़ों दिल को चुराने वाले और वो है मुकेश। फिल्म का नाम है श्री 420 नेकंती होंदित 515 तक का ये फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस ने काम किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए।

और फिल्म श्री 420 का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग को सुना दिए है। नई खतीर 55 का फिल्म राजकुमार और नरगिस का इस गाने में गाया है मुकेश जी और लता जी। दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगला गाना की ओर, वो है परमाशी मोहम्मद रफी का ये गाना है और इसमें काम किया है शायरा बानो राजेंद्र कुमार। फिल्म का नाम है अरमान, फिल्म के नाम है अरमान और ये गाना क्या है धोरो मस्त भरी पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। मिशिक है शंकर जय किशन का और इस गाना को लिखा है हसर जयपुर का ये गाना है और आओ मिलकर सुना जाए।

0: गाना।
1: तुम्हारी हर बांस पे है मुझे बहुत नाज दोस्तों। शेरा बानू राजेंद्र कुमार ने फिल्म अरमान में काम किया है और परमाशी मोहम्मद रफी जी के गाना है हसर जयपुर के साथ में। और हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर हमारे दोस्तों, और ये फिल्म का नाम है और देवानंद उषा किरण फिल्म के नाम है पतिता का ये फिल्म है। दादा हेमंत कुमार और दीदी लजा जी के आवाज में इस गाना को आओ सुनिए।

दादा हेमंत जी के आवाज में आप लोगों इस गाना को सुना है और एक मस्त भरी रोमांटिक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। इसमें काम किया है देवानंद जी और उषा किरण ने। फिल्म का नाम है पतिता दोस्तों। और उसके बाद हम चलते हैं और एक गाना के ओर और वो भी है फिल्म के नाम है, ये भी एक बहुत पुराना फिल्म है, अलबेला का ये गाना है। हमारे दोस्तों लता जी इस फिल्म में इस गाना को गाया है और इसमें भगवान ने बहुत कमाल किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए ये गाना क्या है भाई, बहुत पुराना गाना है ये, और सुना जाए।

भोली सूरत दिल के खोटे, और नाम बहुत बड़ा है कितरूर कितरी को, लेकिन कर्म बहुत छोटे है दोस्तों। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े हैं बाकी दिल से बहुत खोटे हैं हमारे दोस्तों। और हमारे दोस्तों, और ये गाना को जिसके सपने में हम रोज आते हैं, और महेंद्र कुमार और लता जी बताए गए हैं, नई खंती सेफन तक का ये गाना है, आओ मिल के सुना जाए।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फाहुंटे हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहुंटे के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहुंटे हिंदुस्तानी रेडियो।

हाँ अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ, तो ये है इस तरह से मैं मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान नई गिनती फिर से ही।

मैं ना भूलूंगी लता जी और मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ अफिलियंस रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी और रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।

शंकर जय किशन के साज पर माइती मुकेश करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुना है निकती एन सैफ का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

फिल्म अली बाबा एंड द 40 थीव्स यानी अली बाबा और 40 चोर। इसकी कहानी बहुत अच्छी है, गीत सुन

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा। तवारिक गवाह है, यानी खुशकिद ने इतिहास गवाह है, अली बाबा एंड द 40 थीव्स में ये गीत हमने निकाले हैं। और ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेक दिन सस्ते सस्ते का ये फिल्म हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से। जी हाँ,

ललिता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिल के ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं। और आपके धन्यवाद, एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है रफ़ी साहब का, ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ, बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य। और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल यह गीत हम आपको सुनाएं, निकिती तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। इंद्रिय संयुक्त कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए यह शानदार गीत ओफर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत। इस तरह से आ रहा है

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओपी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.pinfaunafm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

0: आई लव यू, ये शानदार दुएत हमने पेश की ऊपर फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओ मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।
1: Thank you.

देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में। निकती निघ्न फैफ तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ ये गीत हम आपको सुनाए हैं फिल्म फर्ज में से निकाल कर हमने पेश की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर। फाउन हिंदुस्तानी पर आप चून हैं, जो लोग चून किए हैं आपका स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम एक सुरेश वादिकर जी के गीत आपको सुनाते हैं। चलो सुरेश वादिकर की आवाज़ में ये गीत।

सुरेश वाडेकर आपको सुनाए ये शानदार गीत निगाहें यार ने के एक ऐसा जादू भर दिया, और ये गीत हमने पेश की आज के कार्यक्रम में। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, जी हाँ, देखते हैं ये प्यारा गीत भी जहाँ तक मेरा ख्याल है फर्श से निकाल रहे हैं, तो इस तरह से हम इसे चला रहे हैं, सुना रहे हैं।

शिकार करने का आए शिकार हो के चले, ये गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। ये अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, और क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से। माइती मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस।

लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दोनों मिलकर आपको सुनाइए ये प्यारा गीत हमने पेश की। चलिए एक गीत हमने प्लेयर में रखे हैं और ये भी लता जी के फिल्म है आओ प्यार करें। जी हाँ, तो चलो सुनते हैं आओ प्यार करें में। औरतें गाना तो है लेकिन कौन सा गाना मैं चलाने वाला हूँ लता जी की, ये सुनिए।

Zo, gaan ze pata chalta, ze is toch wat van plan. लता जी की आवाज़ में ये शानदार गीत हम आपको सुनाए। योजना तो बहुत बनाया मौसम के देखकर। बहरहाल फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने ये गीत पेश की, तो अगर ये गीत पेश की तो चलो हम आपको सुनाते हैं ये गीत उसके बाद।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर ये गीत पेश हुआ, लता जी की आवाज़ में, फिल्म आन मिलो सजना में से हमने निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। अगला गीत हमने प्लेयर में एक रखे हैं, इसकी थोड़ी बयाना बता देते हैं। ये गीत गाया गया है सी रामचंद्रा, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्हीं के साज पर, लता जी के साथ फिल्म अलबेला में। तो बात ऐसे है कि अब कौन रात्रि के 12 बजे रात्रि को यहाँ स्टूडियो आएगा और बैठकर आपको ये गीत सुनाएगा, मेरे बस के तो बात नहीं है। शायद कभी साल में एक बार हो जाए कि 12 बजे रात्रि को मैं यहाँ आऊँ, स्टूडियो में बैठूँ और आपको पहले बताऊँ कि गंगा ये गीत चलाने वाला है, ये नहीं करेंगे। चलिए ये गीत हम अभी आपको सुना देते हैं, क्योंकि 12 बजे रात्रि का कौन इंतज़ार करेगा। चलो हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, 12 बजे रात्रि को जलाना चलाना था, हम आपको अभी सुना देते हैं इस तरह से।

सेरन चंद्रा के साथ परचितल का रामचंद्र खुद और लता जी के साथ ये द्वैत हम आपको सुनाए हैं फिल्म अलबेलाल में से निकाल कर। अब ये तो ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि 12 बजे रात्रि को कोई हमारे को लिखा या मैं आकर ये गीत आपको सुनाऊं तो लगे हाथ हमने अभी आपको सुना दी। यूँ समझिए कि 12 बजे रात्रि है, आपने आँख मूल ली है, रात हो गया। बहरहाल फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने जो चुन किए हैं, इस मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

में प्रेम प्यार मोहब्बत के जगह मिले हैं, वह क्या बात है। रफ़ी साहब की आवाज़ में और लता जी आपको सुनाएं ये शानदार गीत। चलिए ये गीत हमने प्लेयर में और रखे हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊं, इस तरह से आ रहा है। नागपंचमी में से नेगेटिव तुम्हें सही फिल्म

वाह क्या बात है, यह शानदार गीत पेश हुआ हमने चलाए हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं ये गीत। जी हाँ, चलो ये गीत सुनते हैं, इस तरह से आ रहा है।

नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है, लता जी की आवाज में और माइतू मुकेश आपको सुनाए फिल्म कोबरा ग्यूल में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की। तो अगर जो आई लव यू की बात हुई तो चलिए हम आपको सुनाते हैं माइतू मुकेश जी क्या कह रहा है इस तरह से।

गा दीवाने झूम के मैत मुकेश की आवाज में आपको सुनाया गया ये गीत। तो चलिए ये बदली हुई गीत हम रखते हैं। हाँ

ये कश्मीर है, ये शानदार गीत आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है।

सदियों पुरानी अपनी कहानी और रफ़ी साहब और आयशा जी आपको सुनाए रवि के साथ पर फिल्म शहनाई में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए। चलिए अगर नंबर प्लेयर में ये गीत रखे हैं, इस तरह से सुनते हैं।

दिल से दिल की डोर बांधे ये शानदार गीत चला ऊपर पावन हिंदुस्तानी रेडियो। इस तरह से आ रहा है आपकी मांगी हुई गीत।

रफ़ी साहब का ये गीत है चांद की अंगड़ाई। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से।

मैं आशिक हूँ बहारों का मैत मुकेश, मुकेश जी आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप भी हैं, आप सुन रहे हैं और मैं दनाख में स्टूडियो में बैठकर चला रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए ये गीत लता जी और सुबीर सेन। सुबीर सेन के गाना बहुत कम चलता है। अपने हुए पराये में से निकली फिर सस्त लता जी और सुबीर सेन जी।

लता जी और सुबीर सेन, सुबीर सेन मिलकर ये दोनों ये द्वैत आपको सुनाए हैं। फिल्म अपने हुए पराये में से निकाल कर हमने चलाए हैं निगती फिर शस्त्र का ये गीत है शंकर जय किशन के साज पर। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं कि प्यार में क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तक भी डफली वाला भी बन जाते हैं लोग।

डफली वाले डफली बजा, ये गीत सुनाया गया, हमने पेश की ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और ऐसे आ रहा है, हाँ इस तरह से है।

फिल्म भीगी रात में से निकाले हैं निकिती फैफ सस्तिक के ये गीत है रोशन के साथ पर रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में हमने पेश किए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, जी हाँ, और वो है मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। क्या ख्याल है

मुझसे भी खफा रहना, माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। चलिए ये गीत तो सुनाए बिना हम आपको नहीं जाएंगे।

महेंद्र कपूर जी और लता जी मिल के आपको सुनाएं। ये प्यारा गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म घर बसा के देखो में से हमने निकाल कर ये चलाए हैं।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। एनाथिलिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स बदंत एंड ससो लोबी लोबी अंत ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस बलस्त्र या इंटरनेट के लहर द्वारा faunfm.nl पर आप लोग 24 घंटे रोजाना लगातार कार्यक्रम को सुन सकते हो वर्ल्ड वाइड। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइशें, जरूरी खबरें, इश्तिहारे, कॉमर्शियल्स, डेंक अन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, अब मार्ग पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतनी बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अउल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यार, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल टेनिस कंटोर यूरो फन मांडा टू फ्राइडा फन 9 यूर मॉर्निंग्स टू 5 यूर मिडाग्स। कंटोर का टेलीफोन नंबर 07-365-2247 और स्टूडियो कतार का नंबर 07-362-2077। तो जो भी रेडियो का काम हो, डेंक अन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, यू बेंट फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यारो, ढंढोरा भी पीटते रहना, रिक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू इसके लिए। और इसके लिए नतीजक हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो, तो वक्त हो चुका है यार कि आप भी हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। तो आपके लिए हम लोग आपका मनपसंद नगमाएं चलाएंगे हैं। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने उसी मतलब फिर तक। तो आप भी हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। एकदम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ हमारे प्रिय श्रोताओं। गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नाम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म आरजू तक, जो रिलीज किया गया था 1965। कुछ नगमे सुना चुका था मैं आप सभी को, कुछ सुनाने को रह गया है। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मलकाए हुस्न श्री साधना जी के साथ, और महान अभिनेता ग्रेट एक्टर फिरोज खान भी इस फिल्म में काम किया है। संगीतकार है शंकर जय किशन। तो एक जबरदस्त सॉन्ग आप सुनेंगे, सुरों

Het is een Rwayan uit de film Aarzu 1965, Aji Hamse Bachkar Kahan Jayega. महान फनकार सुरों का बादशाह रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में शंकर जय किशन की साज। एक आखिरी बयान आप सुनेंगे एक फिल्म आरजू। जब इश्क कहीं हो जाता है अति सुंदर कव्वाली है और गाने वाले हैं मुबारक बेगम और क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी। शंकर जय किशन के साज हसरत जयपुरी की अल्फाजी 1965 आरजू।